मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज बुधवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026 सुबह के 5:59 होने को हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 6 बजने को है समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है।

उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रूपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में मातृवंदना।

समूह स्वर में अभी आपने सुना मातृवंदना। लीजिए अब सुनिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गणपति भजन, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आपने सुनी ये भक्तिपूर्ण रचना। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह की स्वर में ये पारंपरिक भजन।

कार्यक्रम के अंत में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी के स्वर में श्री कृष्ण वंदना। इसी के साथ आज की वंदना संपन्न हुई।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी। विषय होगा प्रमाणित बीज। प्रातः 6:40 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगे जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति और संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। चिंतन का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 6:50 पर। 7:20 पर हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता सूरदास के साहित्य में अध्यात्म। वार्ताकार होंगे कैलाश प्रसाद सोनी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सुबह 7:30 पर, 8:43 पर, शाम 5:40 पर और रात 8:00।

सुबह 8:30 पर सुनिए धारावाहिक गीत गीता का 17वां भाग। शीर्षक होगा श्रद्धा त्रय विभाग योग। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग सुनिए सुबह 9:00। इसमें आज कलाकार होंगे बद्री प्रसाद कुड़ेरिया। सुबह 9:30 पर सुनिए एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे। 10:00 सुनिए आकाशवाणी भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुने प्रायोजित कार्यक्रम स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य जीवन का 10वां भाग। कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर। 10:30 पर सुने श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन में 1:00 सुने कार्यक्रम महिला सभा। इसमें आज आप सुनेंगी वार्ता आयुष्मान भारत योजना। वार्ताकार होंगे रुचि नागल। शाम 5:00 युवावाणी कार्यक्रम में हमारे युवा साथी सुनेंगे गायक कलाकार गीता हेरवार से लोक संगीत गायन। साथ होगी रोजगार सूचना। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी भोपाल केंद्र से शाम 6:00। शाम 6:30 पर सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज कलाकार होंगे कल्लू कुर्मी।

0: शाम 7:20 पर सुनिए ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम। इसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन का भाग 13। भेंटवार्ता के अंतर्गत सुनिए भूमि विन्यास एवं जुलाई प्रबंधन द्वारा उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार विषय पर ज्योति कहार से एक रविन्द्र प्रजापति की बातचीत। साथ ही सुनिए आज की सीख, जब अबर से उतरा धान खास कुतरा। रात 10 बजे सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज हम मनु प्रसारित करेंगे दिन में 11 बजे। सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे और दोपहर 2:30 पर। दिन में 12:30 पर सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। लोक संगीत कार्यक्रम सुनिए 1:30 पर और सुगम संगीत सुनिए 1:45 पर। इन दोनों ही कार्यक्रमों की प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की होगी। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आज हम अनुप्रसारित करेंगे रात 9 बजे 9:15 पर सुनिए स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम चर्चा का विषय है। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसानी, विषय प्रमाणित बीज।
1: भैया हरो, आज खेती किसानी में एक ऐसी समस्या के समाधान की चर्चा अपन सवई जनन से करत है जोन हर बोनी के समय अपने किसान पंचन के सामू खड़ी हो जाते है। हमारे हर बेर बोनी के समय अच्छी फसल लेवे के लाने प्रमाणित बीज उपचारित करके बोवे की सलाह अपने पंचन का देत रात। अब समस्या जा खड़ी हो जात के बीज उपचारित करवे के पहला प्रमाणित बीज कहाँ से लाओ जाए। पंचो, साची बात तो यही है कि किसानन के लाने प्रमाणित बीज की पूरी व्यवस्था किसानन से सरकारी संस्थाएं करवाती हैं, जैसे बीज निगम, बीज उत्पादक सहकारी समितियां, NSC, SFC, एग्रो तिलहन संघ और कई राज्य के बीज निगम, जे सब निजी कंपनियों से मिलके किसान भैयन खा प्रमाणित बीज बटवावती हैं। हमारे कहवे को मतलब जो है के किसानन के खेतन पे बीज को उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से जोन बीज उत्पादन होत है वही अगले साल पंचन खा सरकारी विपणन संस्थाएं बांटती हैं, जिसे प्रमाणित बीजन की एकदम से मांग बढ़ जात और मांग के बराबर प्रमाणित बीज किसानन खा पूजा पावो कठिन हो जात है और पंच उन्नत बीजन से प्राप्त होए वाले लाभ नहीं ले पाऊ या फिर उन्हें महंगी दरन पे ऐसे बीज

0: खरीदवे के लाने मजबूर होने आउत। पंचों जो अपन खा अच्छे से समझने पड़े के बीज उत्पादन में कहूं ना कहूं से अपन भी जुड़े रात, फिर भी प्रमाणित बीज की मांग के बराबर पूर्ति ना हो पावे को एक सबसे बड़ो कारण है बीज उत्पादन कार्यक्रम में बीज प्रमाणीकरण करावे के लाने किसानन की बड़ी संख्या बीज मांग की आवश्यकता के बराबर न हो पावो। सो हमारी तो सलाह यही है कि अगर अपने किसान पंच ई बीज उत्पादन कार्यक्रम में प्रमाणीकरण करे वाली संस्थान से जुड़ के चले तो अपनी प्रमाणीकरण बीज की आवश्यकता की पूर्ति खुद ही कर सकत। कैसे के अपन खा खुद कितनों बीज लग है जो पतो हुई है, और ऐसे किसान जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और जो सामान्य श्रेणी के किसान है उनकी प्रमाणित बीज की पूर्ति बड़ी आसानी से गांव के संपन्न किसान गांव ही में पूरी कर सकत। पंचो प्रमाणित बीज की समस्या हर बेर हर फसल की बोनी के समय अपने सामने रात है, तो हम जो भी बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार बीज उत्पादन खां बढ़ावा देवे के लाने और प्रमाणित बीजन की पूर्ति बढ़ावे के लाने बीज ग्राम योजना, बीज उत्पादक सहकारी समितियां गठित करके बीज मिनीकिट, सूरजधारा, अन्नपूर्णा जैसी संस्थान के माध्यम से बीज को प्रमाणीकरण करा के प्रमाणित बीज की उपलब्धता बढ़ावे की कोशिश कर रही है। तो भैया हरो हमाओ तो अपन सभी जनन से जो कहबो है कि सरकार के ई बीज उत्पादन कार्यक्रम में अपन सभी जने ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लें, जिसे प्रमाणित बीज की एक बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकें और अपन खुद प्रमाणित बीज अपने गांव में अपने खेतन में पैदा करके प्रमाणित बीज बोएं और बहुत अच्छी उपज लें। अगले साल बीज व्यवस्था की चिंता इसे अपनी दूर हो सकत है। सो भैया हरो किसानी में खेत की बारी लगावो और खेत तैयार करवो, जी में खेत की माटी को परीक्षण, खेत की जुताई, खेत को बखरबो पहलो काम है, उके बाद दूसरी चिंता शुरू होते अच्छे प्रमाणित बीज की और ऊखा उपचारित करके वैज्ञानिक तरीका से बोवे की, जी पे अपनी पूरी मेहनत को फल निर्भर करत है। सो बीज को प्रमाणित कराबो अपने हाथन में है, अपन शासन की बीज ग्राम योजना से जुड़े, गांव में बीज उत्पादक सहकारी समितियों को गठन करो और बीज मिनीकिट, सूरजधारा या फिर अन्नपूर्णा जैसी संस्थान से जुड़ो, प्रमाणित बीज अपने गांव के अपने खेतन में पजाओ, प्रमाणित कराओ और किसानी में आवे वाली प्रमाणित बीज की एक बहुत बड़ी समस्या से हमेशा खा निजात पाओ। जो अपन खा समझने है कि जैसी प्रमाणिकता और गुणवत्ता वालों बीज अपन अपने खेतन में बेबी, फसल भी अपन खा ओसे ही प्रमाणिक और अच्छी गुणवत्ता वाली मिल है, जी के दाम भी अपन खा बाजार में अच्छे से अच्छे मिल है। ऐसे जब किसानी में अपन इतनी मेहनत करत है तना मेहनत प्रमाणित और अच्छी पज देवे वाली गुणवत्ता युक्त बीज के उत्पादन के लाने भी अपन कर सकत। अगर हमारी बात मानी सो जा पक्की मान लो कि अपन अपने बल पे अपने खेतन में बोवे के लाने अच्छो प्रमाणित बीज खुद ही पैदा कर भी और उको पूरो पूरो लाभ भी ले भी।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी मीडियम पर, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर है जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति का और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान मीडियम पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: मनुष्य के पास सब कुछ हो, विद्या हो, वो पढ़ा लिखा हो, बहुत धनवान हो, शरीर से बहुत बलवान हो, पर यदि उसके पास विवेक ना हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। कहा गया है कि बिना विवेक की विद्या खतरनाक है। विद्या पाकर भी यदि ज्ञान की प्राप्ति ना करें, वाद विवाद करें, तो वो विद्या व्यर्थ है। विद्या तो नम्रता, मनुष्यता और सज्जनता सिखाती है। कहा गया है विद्या ददाति विनय, अर्थात विनय का अर्थ झुकना, बड़ों को सम्मान देना है। जैसे फलदार वृक्ष और पानी से भरे बादल झुकने वाले होते हैं, पर पानी से रहित बादल और फलों से रहित वृक्ष झुकते नहीं हैं। इसी तरह धन का सदुपयोग दान देने से ही होता है। दान देना, दूसरों की सहायता करना बड़ा धर्म है। दान कोई किसी को नहीं देता, देने का अर्थ है बोना। हम भिखारी को दान देकर ये कभी न सोचें कि हमने उस पर उपकार किया है, बल्कि ये समझें कि भिखारी ने ही हमारा उपकार किया है, क्योंकि उसने हमें बोने का मौका दिया है। हम जो खेत में बोते हैं उसका 10 गुना खेत से मिलता है। तो जो आज बड़े धनवान हैं, वो उनकी आज की कमाई नहीं है, वो तो पहले जो बोया था उसी को काट रही है। और जिसने पहले बोया नहीं है वही आज दरिद्र, कंगाल और भिखारी है। यदि हमारे पास शक्ति है तो उसका सदुपयोग दूसरों की मदद करने में, अत्याचारों का विरोध करने में करें। परंतु शक्तिशाली होकर दीनों, गरीबों, कमजोरों को सताना, अत्याचार करना एक राक्षसी कार्य है, विवेकहीनता है। आज समाज में विद्या और धन के अहंकारी बहुत अत्याचार करते हैं। लड़के वाले लड़की की शादी में बड़ी बड़ी मांगे करते हैं, जिसे मांगना और चाहना महापाप है। दहेज के लालची मनुष्यता से रहित होते हैं। वे अपने लड़के की कीमत तो मांगते हैं, पर दूसरे की लड़की की कीमत, उसके गुणों की कीमत नहीं मानते। मांग करना ना तो अधिकार है और ना ही धर्म है। होना तो ये चाहिए कि लड़के वाले लड़की के माता पिता का सम्मान करें और एहसान माने कि आपने हमें सेवा करने के लिए और परिवार की वृद्धि करने के लिए कन्या रत्न का दान दिया। लड़की का पिता कन्यादान करता है, श्रद्धा से शक्ति भर दान देता है और सम्मान भी देता है, पर लड़के वाले बदले में क्या देते हैं? उल्टे अकड़बाजी दिखाते हैं। ये महान पाप है, मानवता नहीं दानवता है। पति को भर्ता कहते हैं।

0: पर वे आज भिखारी बन रहे हैं। दहेज चाहने वालों को तो विवाह कराने का अधिकार ही नहीं है, उन्हें समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। रामायण को ध्यान से पढ़ें तो पाते हैं कि ना तो राम जी ने, ना दशरथ जी ने, ना ही कौशल्या जी ने दहेज की मांग जनक जी से की, बल्कि जनक जी ने बहुत दिया पर दशरथ जी ने वही भिखारियों को सब बांट दिया और अपनी तरफ से 400,000 कामधेनु के समान गायें ब्राह्मणों को दान कर दी और भिखारियों को अपनी तरफ से मुंह मांगा अनाज, सोना, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ दिए, सबसे आशीर्वाद पाया। दोनों तरफ से देने की होड़ लगी थी, सब लोग वर वधु को आशीर्वाद दे रहे थे। यही मनुष्यता की सच्ची पहचान है। जो पुत्र वधु के परिवार को लूटकर, पुत्र वधु को परेशान कर स्वयं सुखी होना चाहते हैं वो इंसान नहीं है, वो दानव रूपी आतंकवादी है। ऐसे कुपात्रों को कन्या देना धर्म नहीं पाप है। हे प्रभु, मानव को मानवता तो विवेक तो यही बार बार विनती है। ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। सुनिए समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेशमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडादेशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडादेशयोः सम्बन्धेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह मिलित्वा प्रधानमन्त्री श्रीमोदी 35-2000 दूरदृष्ट्यान्तर्गतं भारत यूके सम्बन्धानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी G7 शिखर सम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सहापि मिलितवान्, तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायी शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य, कूटनीतेः, अन्ताराष्ट्रिय विधेः, सार्वभौमत्वस्य, प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्वम् अधोरेखितम्। केन्यादेशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षासु दीर्घकालं यावत् सहभागित्वं कुर्वन्ति। जापानदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापानदेशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांसदेशस्य एवियन नगरम् अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागिदेशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखर सम्मेलनावधौ भविष्यति। 25,000-2000 फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अन्तिम वारम मेलनानन्तरं उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविध क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः, तथा च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम् अतिरिच्य अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय सन्तुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिकवृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगम्

0: उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री ईयू परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोष्टा इत्यनेन सह ईयू अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्य भावस्य पुनर्निर्माणं इत्यस्मिन् विषये सत्रं अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीत दर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्तीति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडांगणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिक क्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्वार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है।

0: एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G summit in Avignon, France, holding bilateral meetings with leaders from Canada, United Kingdom and UAE yesterday. He also met and interacted with the leaders of several other countries on the sidelines of the G7 meeting. The Ministry of External Affairs said that during their meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart, Mark Carney, welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his meeting with British Prime Minister Keir Starmer, Prime Minister Modi reviewed the progress in India-UK relations under Vision 2035. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit. The two sides called for continued free, fair and unimpeded navigation, trade and commerce through the Strait of Hormuz. During his meeting with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, Mr. Modi emphasized that India and Japan will continue to deepen ties across diverse sectors, with trade and investment remaining priority areas. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France yesterday. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Ma Kinam campaign. He further stressed that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudev Kutumbakam, the world is one family. The G7 nations have announced a

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 12 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनो अभयारण्य जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 18 जून को बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी और ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन व आरती में शामिल होंगी। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भी राष्ट्रपति सहभागिता करेंगी। वे 20 जून को शाम को करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की भी चर्चा की। वहीं फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी मुलाकात की। राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए

0: एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। बैठक के बाद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए परोपकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा।
1: वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वो उपलब्धता नहीं है। तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में रीवा, देवास और एक और जिला हो रहे हैं, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देशभर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अलनीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देशभर में पराली प्रबंधन के लिए जानकारी देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
2: सब जानते हैं कि पराली जलाने के कारण न केवल पर्यावरण बिगड़ता है बल्कि धरती माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। मित्र कीट मारे जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति घटती है और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से हम भलीभांति वाकिफ हैं। इस बार तय किया कि जब धान की बुआई हो उस समय ही पराली न जले, इसकी योजना बनानी चाहिए। कई कदम हम उठाने वाले।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उज्जैन जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 21 जून को होने वाली नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। कल मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब रुख करते हैं खेलों की खबरों का। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लालेर रेमसियामी ने गोल दागे। जापान की ओर से एकमात्र गोल हिरामित्सु ए ने किया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर बना हुआ है, जिसमें उसका अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 बजे होगा। वहीं T20 महिला विश्व कप में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच ब्रिटेन में लीड्स में 7:00 बजे से होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक अब अगले सप्ताह होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 34 जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, शहडोल जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कल मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर नर्मदापुरम और जबलपुर जिले में आज शोभायात्रा निकाली जाएगी। आगरमालवा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक जिले के जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। झाबुआ कलेक्टर ने कल राणापुर में जनसुनवाई में 54 आवेदनों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। जबलपुर नगर निगम में पदस्थ प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च वारंट प्राप्त कर उनके ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 26 जुलाई को आठवीं पचमढ़ी मानसून मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ होगी।

खंडवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय मास्टर वॉलेंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना जिले में पॉली हाउस निर्माण एवं गुलाब तथा अन्य फूलों की व्यावसायिक खेती पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कल कलेक्ट्रेट परिसर गुना में आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर में दो दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला कल शहीद ज्योति यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। मंडला और डिंडौरी में समान नागरिक संहिता की जन परामर्श की बैठक कल आयोजित की गई और शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना ने कल 41 प्रतिभावान बालिकाओं को 2,05,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए वार्ता। सूरदास के साहित्य में आध्यात्म, वार्ताकार हैं कैलाश प्रसाद सोनी।
2: कवि सूरदास के साहित्य में अध्यात्म। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। भक्त प्रवर सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। गुरु वल्लभाचार्य जी की साधना का मार्ग पुष्टि मार्ग नाम से विख्यात है, जो प्रेम समर्पण और भक्ति की साधना का मार्ग है। महाकवि सूरदास के साहित्य में अध्यात्म और दर्शन का अत्यंत गहरा और व्यापक समावेश है। भक्त प्रवर सूरदास की भक्ति केवल ईश्वर की स्तुति ही नहीं, बल्कि जीव और ब्रह्म के एकाकार होने की आध्यात्मिक यात्रा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य से भगवत लीला के गान की प्रेरणा लेने के बाद सूरदास की काव्य और संगीत की समस्त शक्तियां उभर आई थीं, और फिर उन्होंने जीवन पर्यंत श्री कृष्ण के परम मनोहर रूप और लीला का गुणगान करने में अपनी वाणी का श्रृंगार किया। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास जी को काव्य संगीत और विविध कलाओं का संपन्न वातावरण सहज ही प्राप्त हो गया। उनका संसारिक वासनामय प्रेम ईश्वर के समग्र प्रेम में परिवर्तित हो गया और वे सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था के स्तर स्थिर होकर प्रेम लक्षणा एवं विरही पीड़ा के पद रच कर गाने लगे। महाकवि सूरदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर है। इस ग्रंथ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक अंश भ्रमर गीत है, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, तब बिरह से पीड़ित गोपियों को समझाने के लिए अपने महाज्ञानी मित्र उद्धव जी को भेजते हैं। गोकुल की गोपियों और उद्धव जी के बीच योग और भक्ति के माध्यम से भौतिकता तथा आध्यात्मिकता के अनुपम संवाद का काव्यात्मक वर्णन है। गुरु वल्लभाचार्य जी का पुष्ट मार्ग अर्थात ईश्वर की कृपा अनुग्रह से सांसारिक प्रेम और वासना को ईश्वरी प्रेम में रूपांतरित कर आनंद मग्न होना है। पुष्ट मार्ग साधना में लीन महाकवि सूरदास ने कृष्ण को परमात्मा तथा राधा जी को परमात्मा के समग्र प्रेम का प्रतीक मानकर काव्य रचना की प्रेम के मिलन और विरह के पदों में पिरोकर भगवत लीला का गायन करते हुए आनंदमय जीवन के कण कण को सुखानुभूत में बदलकर जन सामान्य के भेंट स्वरूप प्रदान किया। महाकवि सूरदास ने अपने आध्यात्मिक साहित्य में माया अविद्या का मार्मिक वर्णन किया है। माया जीव को ब्रह्म से दूर करती है। जब तक मनुष्य माया के भ्रम से ग्रसित रहता है, तब तक वह दुखी जीवन जीने को मजबूर है। ईश्वर की कृपा अनुग्रह से

ही मानो माया के मोहजाल से मुक्त हो पाता है। माया की व्याख्या व्यथा को व्यस्त करते हुए सूरदास जी कहते हैं, अब कह राख ले भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया वारिद साधे बान, ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुके सच सचान। सूरदास सर लगे सचाने, दो भात दुख भयो आन, ये कौन उबारे प्राण, असुमरत ही ऐ दसे उपारदी कर छूटे संधान। असूरदास सर लगे सचाने, जय जय कृपा निधान। हे ईश्वर, मैं अनाथ पक्षी संसार रूपी डाल में बैठा हूँ, और मुझको मारने के लिए व्रत रूपी बहेलिया बाण ताने बैठा है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर वासना रूपी बाज मेरे ऊपर घात लगाए। दो भात दुख भयो आन, ये दोनों प्रकार से मेरे सामने ये भारी संकट है, आपके अतिरिक्त मुझे और कौन बचा सकता है। कि सुमरत ही ऐ दसो पारधी कर छूटे संधान, जैसे ही भगवान का स्मरण किया कि एक सर्प ने आकर के ऐ दसो पारधी और कर छूटे संधान, असुरदास तर लगे सचाने, जय जय कृपा निधान। भक्त वत्सल गोपाल के चरणों में जय जयकार करने लगे। इस प्रकार अपनी अविद्याओं को दूर करने के लिए भगवान से सूरदास जी कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना कंठ विषय की माल, माया को कट फेटा बांधो नूपुर शब्द रसाल, सूरदास की शब अविद्या दूर करो नंदलाल। महाकवि सूरदास जी का महाकाव्य सूर सागर का सारांश है कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की गति मानव को जटिल कर्मकांड या हठ योग से प्राप्त नहीं होते, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम से प्राप्त होते हैं। महाकवि सूरदास ने अपने आध्यात्मिक दर्शन में निश्चल और निस्वार्थ प्रेम तथा पूर्ण समर्पण को प्रधान मानते हुए अपनी वाणी को पदों से अलंकृत किया है। महाकवि सूरदास जी की भक्ति भावना मुख्य रूप से सगुण में अनन्य प्रेम पूर्ण है। उनकी भक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और अगाध अनुराग झलकता है, जिसमें ज्ञान और अनेक हठ योगिक क्रियाओं से अधिक प्रेम को महत्व दिया गया है। सूरदास जी के काव्य में आध्यात्मिकता का दर्शन उनके अन्न भाव प्रदर्शन में झलकता है। आपको वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था में क्रियाकलापों लीलाओं में चंचलता हठ माखन चोरी आदि बाल लीलाएं इतनी सजीव और मनोवैज्ञानिक तौर पर वर्णित हैं कि जो काव्य जगत के विश्व साहित्य में दुर्लभ है। बाल लीला के पदों में भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष दूध में पानी की तरह घुला मिला है। आपने एक बालक के माध्यम से ईश्वर के अलौकिक रूप का दर्शन किया और कराया। शिशु अवस्था में भगवान कृष्ण सक्तासुर का कैसे वध करते हैं, उसे आपने इस पद में कैसे केंद्रित किया। कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले हरक हरक अपने रंग खेलत, शिव सोचत विद बुद्ध विचारत बट बाढ़े ओ सागर जल छेलत, उन ब्रजवासन बात न जानी समझे सूर सगट पग ठेलत। सूरदास जी की भक्ति में दास्ता भाव अल्प और साख भाव अधिक है। वे कृष्ण को अपना आराध्य के साथ उन्हें अपना परम मित्र भी मानते थे। उनकी दृष्टि में सच्चा मित्र किसी प्रकार का पर्दा नहीं रखता। मित्र से अपने मन की बात स्पष्टता से कही जा सकती है। साख भाव के माध्यम से सूरदास जी अपने सखा कृष्ण से कहते हैं कि आप पतित पावन हैं, मैं पतित हूँ, यदि आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो आपका ही यश समाप्त होगा, अतः आप अपने यश की रक्षा के लिए मेरा उद्धार कीजिए। कीजिए प्रभु अपने विरद की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो नेक तिहारे काज, कीजिए प्रभु अपने विरद की लाज। सखा भाव के माध्यम से वे अपने मित्र से झगड़ने भी लगते हैं और कहते हैं, आज हो एक एक कटरी हो कह तुम ही के हम ही माधव अपने भरोसे लड़ी हूँ, हों तो पतित सात पीढ़ीन को पतित है निस्तरी हूँ, अब मैं उघर नचो चाहत हूँ तुम्हें बिरद बिन करी हूँ, कत अपनी प्रतीत नसावत मैं पायो हरि हीरा, सूर पतित तब ही उठी है जब हंस दई हो वीरा। इस प्रकार सूरदास जी अपने काव्य साहित्य में भगवान कृष्ण की सगुण भौतिक लीलाओं के माध्यम से उच्च कोटि का आध्यात्मिक दर्शन वर्णन किया है, इसलिए उन्हें सूर के समान दीप्तमान की संज्ञा में अद्वितीय कवि कहा जाता है। गोपियों और राधा को प्रेम का प्रतीक माध्यम से सूरदास जी ने माधुर भाव भक्ति को दर्शाया है, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम अनन्य प्रेम
विरह की पीड़ा और तड़प तथा आत्मसमर्पण है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, अध्यात्म में ईश्वर के प्रति शरणागति

0: को दर्शाता है। गोपियों का विरह केवल वियोग नहीं बल्कि परमात्मा से मिलन की तीव्र आध्यात्मिक उत्कंठा है। गोपियां भ्रमर गीत में उद्धव जी से कहती हैं, अखियां हर दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नयनन को निस दिन रहत उदासी। विनम्रता और दयन भाव भी सूरदास जी के पदों में अलंकृत हुआ है। उनकी निष्ठा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की भांति केवल भगवान कृष्ण पर ही निष्ठ है। उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी देवता की आराधना नहीं की। वे अपने में कहते हैं, और देव सब रंग के भिखारी, इसलिए कहते हैं, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छोड़ महातम और देव को ध्यावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। जिस प्रकार से जहाज में बैठे हुए पंछी को जहाज के अतिरिक्त कहीं सहारा नजर नहीं आता, उसी प्रकार से भक्त को अपने भगवान के अतिरिक्त कहीं सहारा नजर नहीं आता, इसलिए सूरदास जी अन्यत्र नहीं जाना चाहते और कहते हैं कि ये सभी प्रकार से सुगम है, क्योंकि वो निर्गुण धारा से भी प्रभावित हुए लेकिन उन्होंने देखा कि जिसका कोई आधार नहीं है, इसलिए कहते हैं मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। और मन की गति के लिए कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गति भावे, परम स्वाद सभी सो निरंतर अमित तो सुप जावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने चो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत में निरालंबिकित धावे, शविविद अगम विचारी ताते सूर शगुन पद कावे। जिस ब्रह्म के का न रूप है न रेखा है न गुण है न जाति है न जुक्ति है न जिसके प्राप्त करने का कोई तरीका है, इसलिए बिना सहारे के कहां जाया जाए, इसलिए मैं सभी प्रकार से सरल जान करके सगुण ब्रह्म के पद गाता हूं और उन्हीं की पद रचना करता हूं। इस प्रकार से सूरदास जी ने ब्रह्म के अगम अगोचर स्वरूप को अपने आध्यात्मिक काव्यधारा में पिरोहित किया है। उनका ब्रह्म अगम अगोचर है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है वाणी से, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसकी पहचान विशेषता बताने में वाणी मौन हो जाती है, उस ब्रह्म को गाने के लिए सगुण का ही आराधना का मार्ग सुगम है। इसलिए सूर कहते हैं, सब बिन अगम विचारे ताते सूर सगुण पद गावे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूरदास जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक विचारधारा का बहुत ही सुंदर समायोजन किया है और उनके साहित्य में आध्यात्मिकता जो है कूट कूट कर भरी हुई है। इस प्रकार से हम सूरदास जी की भक्ति को नमन करते हैं।
1: हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता सूरदास की साहित्य में आध्यात्म। वार्ताकार थे कैलाश प्रसाद सोनी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म का नाम है पत्थरों का शहर। गीतकार हैं जेपी सतीश और संगीतकार हैं इकबाल कुरैशी।

0: अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आपने सुना पत्थरों का शहर फिल्म का ये गीत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए अब सुनते हैं भावना दत्ता की स्वर में समुंदर फिल्म का ये गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन बनाई है RD वर्मन ने।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना सहस्र जयपुरी का लिखा ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आई मिलन की बेला।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, लीजिए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में जब प्यार किसी से होता है इस फिल्म का ये गीत। गीत रचना है हसरत जयपुरी की और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनते हैं प्रोफेसर फिल्म में मोहम्मद रफी को। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।
1: सौ साल

कार्यक्रम के अंत में लीजिए, अब सुनते हैं ससुराल फिल्म का ये गीत, आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। सुनिए समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत

0: एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: एनटीए इज कमिटेड।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है धारावाहिक गीता का भाग 17। शीर्षक है श्रद्धात्रय विभाग योग।
1: शास्त्रों के कहे अनुसार कर्म करने की आज्ञा होने पर अर्जुन ने उन लोगों की निष्ठा के बारे में प्रश्न किया जो शास्त्र के विधानों का पालन नहीं कर पाते परंतु श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं। उत्तर में भगवान ने श्रद्धा तप यज्ञ आहार आदि सभी का 3 गुणों के अनुसार वर्णन किया है। अंत में अश्रद्धा से किए गए कर्म को असत बताया है। प्रस्तुत है 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गीता का 17वां भाग। शीर्षक था श्रद्धात्रय विभाग योग। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

गीत गाता चल। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, कभी कभी फिल्म से। आवाज है मुकेश की। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है सलील खयाम ने।

अभी आपने सुना कभी कभी फिल्म का गीत, आवाज थी मुकेश की। गीतकार थे साहिर और संगीत दिया था खय्याम ने।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना योगेश का लिखा ये गीत। फिल्म का नाम था छोटी सी बात और आवाजें थी आशा भोसले और यशुदास की। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

मीडियम पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। इसमें आज कलाकार हैं बद्री प्रसाद कुरेड़िया। हारमोनियम पर हैं सतीश कुमार पांडे। बैंजो पर है लखनलाल वंशकार और ढोलक पर संगत दे रहे हैं गोविंद। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनते हैं इनके स्वर में ये लोक शैली बद्ध गीत।

0: गायक कलाकार बद्री प्रसाद कुरेड़िया के स्वर में अभी आपने सुना लोक शैली बद्ध लोकगीत।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: मोरे छत्रसाल महाराज, लीजिए अब ये सुनते हैं बनरा लोकगीत बद्री प्रसाद कुरेड़िया के स्वर में।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हील्स, मंदिर की माता।
4: गुमान काहे को लीजिए अब सुनते हैं ये दादरा। गायक कलाकार हैं बद्री प्रसाद कुरेड़िया।

0: गुमान काहे को अभी आपने सुना ये दादरा, आवाज थी बद्री प्रसाद कुरेड़िया की।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: लीजिए अब सुनते हैं ये सुमरनी।

श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुमरनी, आवाज थी बद्री प्रसाद कुरेड़िया की। लीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं ये चौकड़िया।

गायक कलाकार बद्री प्रसाद कोरेडिया के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये चौकड़िया। लीजिए कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं ये ढमरियाई लोकगीत।

इस ढिमारियाई लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इसमें आज कलाकार थे बद्री प्रसाद कोरेड़िया, हारमोनियम पर थे सतीश कुमार पांडे, बैंजो पर थे लखनलाल वंशकार और ढोलक पर संगत दे रहे थे गोविंद। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे। श्रोताओं, इस फिल्म का पहला गाना हम आपको सुनवाते हैं कुमार शानू की आवाज में। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मन ने और फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी। 1942 अ लव स्टोरी विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक प्रतिष्ठित हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें दो प्रेमियों नरेन अनिल कपूर और रज्जू मनीषा कोयराला की कहानी दिखाई गई है। लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनाते हैं।

श्रोता, 1942 अ लव स्टोरी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और डैनी डैनसोपा। निर्देशक इसके विधु विनोद चोपड़ा थे। संगीत दिया था राहुल देव वर्मन ने। यह कहानी कसौनी हिमालय की तलहटी के परिवेश पर आधारित है। नरेन एक धनी परिवार का लड़का है जिसके पिता अंग्रेजों के वफादार हैं, वहीं रज्जो एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी है। कहानी में मोड़ तब आता है जब रज्जो के पिता अनुपम खेर एक क्रूर ब्रिटिश जनरल की हत्या की योजना बनाते हैं, जिससे नरेन और रज्जो के प्रेम संबंध खतरे में पड़ जाते हैं और नरेन को अपने पिता के बजाय सच्चाई का रास्ता चुनना पड़ता है। 1942 अ लव स्टोरी ने कुल 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इनमें एक ही फिल्म के लिए विभिन्न श्रेणियों में मिली सफलताएं शामिल हैं, जिनमें से प्रमुख 9 मुख्य अवार्ड हैं। यह फिल्म अपने बेहतरीन संगीत और गानों के लिए जानी जाती है। इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राहुल देव वर्मन, सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला जावेद अख्तर को कुछ ना कहो और एक लड़की को देखा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक कुमार शानू को और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक कविता कृष्णमूर्ति को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला जैकी श्रॉफ को। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत, हम सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म है अ लव स्टोरी, 1942।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोता, इस फिल्म को इसके शानदार संगीत और गीतों के लिए हमेशा याद किया जाता है। यह महान संगीतकार आर डी वर्मन की अंतिम फिल्म थी। इसके सभी गीत जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कुछ ना कहो और रिमझिम रिमझिम बहुत लोकप्रिय हुए। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कुछ ना कहो, लीजिए अब सुनते हैं इस गीत को। आवाज है शानू की।

श्रोता, आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म कार्यक्रम के अंतर्गत 1942 लव स्टोरी फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की युगल स्वर में। गीत लिखाया जावेद अख्तर ने और फिल्म है 1942 लव स्टोरी।

इस गीत के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज आपने सुनी 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे। मीडियम वेव और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। सुनिए जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्या का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले में गर्मी के मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। इधर जिला प्रशासन और नगर निगम ने बारिश से पहले एहतियात के तौर पर कई आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए हैं ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के केसली से लाडली बहना की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने देवरी क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ रूपये की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। डॉ. यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड की धरती ने अपने अंदर गौरवशाली अतीत को संजोकर रखा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की सहभागिता और नेतृत्व के माध्यम से आज मध्य प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ता हुआ भारत को विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग दे रहा है। वर्ष 2026 को प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषक कल्याण वर्ष में सरकार किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है। सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचित रकबा पहुंच गया है और सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर करने का है। वहीं दुग्ध उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज जरूरतमंदों को आवास, स्वास्थ्य सहित समस्त सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और दमोह सांसद राहुल सिंह तथा स्थानीय विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया ने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर कई जन सरोकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें वृक्षारोपण, योग दिवस की तैयारियां और जन कल्याण शिविरों का आयोजन शामिल है। इनमें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों की भागीदारी हो रही है। सागर जिले में 12 जून से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने सागर संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की विभागीय समीक्षा बैठक जिला सहकारी बैंक के सभागार में बीते दिनों आयोजित की। बैठक में उन्होंने प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में सदस्यता वृद्धि अभियान तथा खरीफ के लिए किसानों को ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री यादव ने कहा कि किसानों को कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के द्वारा 14 अप्रैल से 30 जून तक 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से 500 रूपये अंश पूंजी तथा 100 रूपये सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उन्हें सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाया जाए, जिसे वे 0% ब्याज सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने समिति प्रबंधकों को सदस्यता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने तथा जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर बीते दिनों कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने और परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। नीट परीक्षा के सिटी कोऑर्डिनेटर मनीष गुप्ता ने बताया कि सागर शहर में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सभी तरह के सुरक्षा इंतजामों और मापदंडों के साथ परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण शाला मकरोनिया सागर में संचालित 15वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में नर्मदापुरम जोन के पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थियों की परेड संपन्न हुई। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सागर जिले की चिट्ठी। आलेख था विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के थे। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: बीटी में 444.4

मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन का भाग 10।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। आज बुधवार का दिन है, अपने निश्चित और निर्धारित समय पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चितवार जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर। बहुत सारे छोटे छोटे छोटे सवाल हैं और यूं कह सकते हैं कि लोगों की जिज्ञासाएं हैं, तो मैं वही कुछ सवाल आपसे आज पूछना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि डायबिटीज ज्यादा खतरनाक है या डायबिटीज के कारण होने वाला हार्ट अटैक।
1: बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मैं हमेशा कहता हूं कि मधुमेह को आप अवसर माने अवसाद ना माने। तो मधुमेह, अगर आप मधुमेह को स्वीकार करते हैं, डॉक्टर की सलाह में रहते हैं, नियमित संयमित भोजन, नियमित व्यायाम, 6-8 घंटे की नींद, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, टेंशन तनाव कम करते हैं, तो आपको हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। तो मधुमेह कहीं ना कहीं आपको हृदय रोग से बचा रहा है, अगर उसको सही दिशा में आप लेते हो। विपरीत दिशा में अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे लोगों को मधुमेह के साथ साथ हृदय रोग की गति बढ़ जाती है। हृदय रोग होता है तो छाती का दर्द महसूस नहीं होता, और कई बार हम जब इन मरीजों की एंजियोग्राफी करते हैं तो प्लास्टिक करने लायक आर्टरी या वेसल बचते ही नहीं है, हर जगह छितरा छितरा रुकावट रहता है। तब डॉक्टर बोल देता है भाई बाईपास करवाओ। तो ये परिस्थिति केवल यहाँ नहीं होती, ये पैरों में भी होती है, दिमाग की नसों में भी होती है, गुर्दे की नसों में भी होती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो परिणति है, जो लापरवाही के कारण है, ये ज्यादा खतरनाक है।
0: सर ये वाकई जो साइलेंट अटैक होता है वो डायबिटिक व्यक्ति को ज्यादा होता है, क्या यही कारण है?
1: देखिए हाँ, क्योंकि आपके शरीर में अगर छाती में दर्द हो रहा है तो कम से कम आप डॉक्टर के पास तुरंत जाओगे, चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करोगे, उनसे मदद लोगे। पर अगर डिसऑटोनोमिया, उन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो कि डायबिटीज में होता है, तो आपको ये लक्षण पता ही नहीं चलेंगे। अगर ये लक्षण पता नहीं चले तो आप इलाज कैसे करवाओगे?
0: सर यहाँ एक सवाल और सबके मन में आता होगा कि अगर हम डायबिटिक हो गए हैं तो निश्चित ही क्या हम हार्ट पेशेंट होंगे या हमारा ब्लड प्रेशर असंतुलित रहेगा?
1: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, आप कैसे देखते हैं, फिर से बात वही आती है, आप अवसर की तरह देखते हैं कि अवसाद की तरह देखते हैं। तो अगर आप रन रेट से गेम खेलते हैं, खाली पेट 100 के करीब रखते हैं, भरे पेट 180 के अंदर रखते हैं, 3 महीने का एवरेज 7% के आसपास रखते हैं, तो जीत तो निश्चित है, चिर यौवन और चिरायु जीवन भी मिलेगा आपको। पर अगर आप लापरवाह हैं, परेशान होते हैं, हर रिश्तेदार से कहते हैं अरे मुझे तो डायबिटीज है, कोई ना कोई आपको टोकता रहता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी नेतृत्व क्षमता ही, जीवन के नेतृत्व की क्षमता कम हो जाती है, तो उद्देश्यहीन जीवन में तो असफलताएं ही आएंगी, तो फिर हृदय रोग भी आएगा, लकवा भी आएगा, किडनी रोग भी आएगा, ऐसा मेरा सोचना है।
0: सर किसी व्यक्ति को हार्ट की परेशानी हो चुकी है, उसने जैसा कि बाईपास की है या ओपन हार्ट हुआ है, अब डायबिटिक तो है व्यक्ति, उसे फिर जीवन कैसा जीना चाहिए?
1: देखिए, आपको हृदय रोग हो गया है तो भी इसका ये मतलब थोड़ा है कि आपको छाती पे हाथ रख के बैठना है। आप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शंस अच्छे हैं, तो आप जिस आदमी की एंजियोग्राफी नहीं हुई है उससे तो ज्यादा सुरक्षित हो गए। आपको मालूम है कि आपकी धमनियों में रुकावट नहीं है, जैसे हमने आपने नहीं करवाई अपनी एंजियोग्राफी, हमें नहीं मालूम अभी वर्तमान स्थिति क्या है।
0: बिल्कुल सच है।
1: तो फिर वो दृष्टिकोण का अंतर वहां भी आ जाता है। बाईपास सर्जरी कराइए, हार्ट फंक्शन अच्छे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन अच्छे हैं, हार्ट फेलियर नहीं है, तो मुस्तैदी से जीना चाहिए। मेरे घर के आसपास मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग हैं जो आज मुस्तैदी से फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं।
0: वाकई मित्रों, ये एक ऐसी समस्या है जो हम सबसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आज डायबिटीज दिन ब दिन हमारे घर में चुपके से आ रही है और हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना इलाज और अपनी समय समय पर जो नियमित जांच है वह जरूर करवाते रहिए। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चितवार जी से। आप अपने विचार अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 8878112343। नंबर एक बार

फिर सुन लीजिए 8878112343। अब मिलते हैं अगले बुधवार, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना का नमस्कार।

सिबिल्ला। बच्चों आराम से गाइए, दौड़ना मत। और यह है तीसरा और अंतिम चरण। इसमें पहला और तीसरा चरण एक तरह के हैं।

0: चलिए अब हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। वाद्यों के साथ गाने में बड़ा मजा आएगा, है ना?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: सितार बजाने के लिए यहाँ आए हैं जयंत कुमार दास, कीबोर्ड पी मोहनराज, गिटार बी ए जयसिंह, श्रुति सहकार दे रहे हैं सी वी रामकृष्णा, तबला बजाकर भाई रविंद्र यावगल आपके दोस्त बन गए हैं ना? चलो अब तबले पर संगति दे रहे हैं रविंद्र यावगल।

0: बच्चों, अब आपने एक गीत सीख लिया ना? क्या इस गीत आपको कैसे लगा?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बाकी बच्चों को भी सिखाएंगे ना?

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा तुझे।

रील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन

मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो मित्र निधि पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं दीवाना फिल्म से। गीत लिखा है समीर ने, आवाज है कुमार शानू की और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश पत्र भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। ग्राम बिडौरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकेन्द्र सिंह गुर्जर, यशपाल गुर्जर, जयपाल गुर्जर, महिपाल गुर्जर, नंदिनी मानवी, नैना, सूर्यांश गुर्जर। ग्राम तीतरा, खलीलपुर, जिला जालौन से अंजलि सिंह जाटव, ऋषि जाटव, आकांक्षा, राघवेंद्र जाटव। चारमीनार चौक, गंडई पंडरिया से दरियाना मल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी। झूलेलाल चौक, तिल्ला से हरीश कमल, सेतपाल, भूमिका सुशीला देवी। ग्राम पोस्टखन्ना, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश नामदेव, श्रीमती पुष्पा नामदेव, कुमारी मेघा, घटा, रंभा, वर्षा, शिल्पाल का परी, भूमिका नामदेव। इसी गीत को पसंद किया है ग्राम श्यामा झोर पोस्ट बराकी रथपुरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से पंचूलाल कुशवाहा, चतुरबाई जयंती कुशवाहा, नवल किशोर, गायत्री कुशवाहा। ग्राम लहोड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागनी रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव। हनुमान जी मंदिर के पास नरसिंहगढ़ पूर्वा, छतरपुर से दयाशंकर कुशवाहा, भवानी देवी, नारायण दास कुशवाहा, इंदु देवी, भागीरथ कुशवाहा, ममता देवी, यस राज, आयुष, भूमिका रिक्की। इसी गीत को पसंद किया है चंद्र भान नामदेव, घासी राम, कृष्ण प्रीतम, रवि मंजू, साधना, केश कुमारी, श्लोक सीमा, वंदना राज, समस्त नामदेव परिवार ने। ये पत्र है ग्राम पोस्ट देरी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। इसी गीत को पसंद किया चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर से जमुना प्रसाद कुशवाहा, लाट कुंवर कुशवाहा, लीना और गौरव कुशवाहा। ग्राम तालगांव, तहसील भांडेर, जिला दतिया से मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार नागल, प्रताप सिंह नागल, अभिषेक कुमार नागल, कविता नागल, गुड़िया शिवम नागल और उनके मम्मी पापा। ग्राम कनाय और करतल पोस्ट पुंगरी, तहसील करनारैनी, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश से राम सत्य प्रकाश अहिरवार, ठाकुर दीन, माता दीन, राम हेत, ओम प्रकाश, राम रतन, रविशंकर, प्रांशु, किरण, बबली ज्योति, राजकुमारी, प्रभा, दीपा, पूजा, अर्चना। इसी गीत को पसंद किया है मोटक का माफी, जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम देवी, कनिका पटेल। पाकिजार रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शादिक, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतशमा खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वर में। फिल्म है धड़कन। गीत रचना समीर की है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। और इस गीत के लिए हमें ईमेल संदेश प्राप्त हुए हैं आप सभी श्रोताओं के। ग्राम भवई, तहसील नरेनी, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश से बुद्ध विलास। दीपक नामदेव, ये पत्र में प्राप्त हुआ है। ग्राम पोस्ट गोना, कुस्माड़ थाना, सौजना, तहसील मेहरौनी, जिला ललितपुर, झांसी, बुंदेलखंड से। कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, रामदेवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनलाल नामदेव, चाहना नामदेव, आकाश नामदेव, रानी परी नामदेव, सुरभि नामदेव, पायल नामदेव और उनके परिवार वाले। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव। ग्राम खकल, तहसील कौंच, जिला जालौन से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंसराज सिंह गुर्जर एवं समस्त परिवार। इसी गीत को सुनना चाहे मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनाबाज अब्बासी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरमकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यम आनंद। बोछड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। इसी गीत के लिए हमें ईमेल संदेश भेजा है। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नामाला ओम कुमार सुरलकर। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली, उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक सगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभय सिल्लोर से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, गायत्री, इसी गीत को पसंद किया है। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सईमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से कल्याण सिंह, पुष्पा सिंह, नितिन सिंह, जतिन सिंह। गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका येले, ये ईमेल संदेश में भेजा। सिद्धार्थ नगर दयापुर बाबली से इसी गीत को पसंद किया है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया। पदवा नगर नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। गोल्डन रेडियो श्रोता संगराज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकत पुरामऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू

स्वर्णकार मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कारपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा सबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी कटरा चांद खा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य सुंदर देवी मौर्य प्रकाश मौर्य रिंकी मौर्य कपिल मौर्य वेदराम मौर्य कैलाश मौर्य सुनील मौर्य खुशबू मौर्य आरोही मौर्य स्वाति मौर्य। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बस तुम रहते हो।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद छतरपुर आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं लगान फिल्म का ये गीत, आवाजें आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों की। एआर रहमान का संगीत है और गीत रचना है जावेद अख्तर की। और आप सभी श्रोताओं की फरमाइश हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर प्राप्त हुई है। ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी। चडुमरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्रानी, माया साहू। इसी गीत को पसंद किया है उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लाघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत और समस्त परिवार। इस गीत को पसंद किया मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन। कस्बा उघैती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील, कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा, हबीबा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी। आकाशवाणी छत्तीसगढ़ से सुरेश वाडेकर जी, लता सरद, सदर बाजार कुरावाले से पत्र में भेजा अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, विनीत कुमार वर्मा। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद पंडलकार, वीना वंडलकार, विधिका वंडलकार। इसी गीत को पसंद किया है जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ भर परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई। होली चौक उत्तमगढ़ दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, पूनम चालिया। ये पत्र मिला है हमें गांव आरायन जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, नवीन शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। राजकमल रेडियो श्रोता साटी जिला जालाना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस। राजेंद्र नागर, अंजू नागर, मोहित नागर, तानिया नागर। ये पत्र है भटिंडा रोड मंडी डबवाली से। इसी गीत को पसंद किया है मछली गोदाम कैदी मुड़ा राजगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमल गौतम। बुद्ध नगर खंडवा से नदीम भाई, राजू जी। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले। गांव भोजपुर तगा चिलकाना सरहानपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद

इसी गीत के साथ ही आपके पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए आपके रेडियो मित्र निधि पांडे को। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: का गीत है वो गाना सुनना चाहते हो। मैं नई उम्र की नई फसल फिल्म का नाम है।
1: जी जी जी, नई उम्र की नई फसल का कौन सा गीत?
0: स्वप्न झरे फूल से, नींद चुभे शूल से।
1: जी जी जी जी,
0: लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
1: जी, नीरज जी का लिखा हुआ ये बहुत ही शानदार गीत है।
0: बहुत अच्छा गीत है, इसके मतलब इबारत इसकी बहुत अच्छी, शब्दों का जो विन्यास है।
1: जी जी जी,
0: बहुत शानदार है इसका, मतलब इतनी अच्छी नीरज साहब ने लिखा है।
1: जी
0: जी गीत है।
1: जी जी जी, उनकी कालजयी रचनाओं में से एक है ये।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।

0: हेलो, कौन बोल रहे हैं आप?
1: परम आदरणीय दीदी शारदा सप्रेम, प्यार से नमस्कार
0: जी।
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ
0: जी। नमस्कार, कैसे हैं शारदा जी?
1: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपका आशीर्वाद, बांके बिहारी कृपा से घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल से रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो मथुरा तो है, तो वहाँ का तो सुरीला सा मौसम होता है, वहाँ का वातावरण ही बहुत अच्छा है
1: जी। इस वक्त दीदी मंद मंद हवाएं चल रही हैं और खिली खिली धूप है और तापमान भी गिरकर लगभग 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है।
0: हाँ।
1: और रात में यही तापमान 30 के आसपास बनता है।
0: मौसम जो है वो कुछ खुशनुमा हो चुका है।
1: संडे बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है।
0: हाँ, और जब कभी छींटे पड़ते हैं बारिश के तो और भी ज्यादा आनंद आता है। और हम इंतजार भी कर रहे हैं बेसब्री से कि मानसून आ जाए, मसावन हो। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: बस बरसात की और मानसून की बातें चल रही हैं।
0: हाँ।
1: तो एक ऐसा ही गीत है जीवन मृत्यु में।
0: जीवन मृत्यु
1: जी
0: जी जी कौन सा?
1: लता और रफी ने गीत को गाया है।

0: हम पप्पू बोलते हैं, पप्पू सिंह बोलते हैं। बढ़िया जी जी।
1: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं, आपका पूरा परिचय तो दीजिए।
0: जिला बांदा तहसील नरेनी से बोलते हैं।
1: जी जी जी, कैसे हैं?
0: बढ़िया है दीदी जी।
1: अच्छा,
0: नीतका जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपसे पहली बार बात हो रही है दीदी जी।
1: अच्छा हाँ, मुझे भी ऐसा लगा पप्पू सिंह जी, और नाम से भी कई बार हम लोग लोगों को पहचानने की कोशिश कर लेते हैं कि हाँ हमारी शायद बात हुई है। है ना
0: जी।
1: कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
0: हीरो फिल्म का गीत सुना दीजिए
1: जी। कौन सा?
0: लोगों से सुना, किताबों में लिखा, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।
1: जी जी जी।
0: और दीदी जी हमारे साथ प्रेमदास बाबा हैं, सुन रहे हैं, फूल चंपाल भी सुन रहे हैं।
1: बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया पप्पू सिंह जी। नमस्ते।

0: जी नमस्ते मैडम
1: जी, आपका परिचय बताइए।
0: जी दमो से बोल रहे हैं, गिरधारी से।
1: जी कैसे हैं?
0: कैसे हैं आप? ठीक है मैडम
1: जी? हम तो बहुत अच्छे हैं।
0: जी जी मैडम,
1: आज फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: मैडम जी हमको गाना सुनना है ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, और शेरा वाली ऊंचे डेरा वाली बिगड़े बना दे मेरे काम।

0: नमस्कार मैम, नमस्कार। अम्बेडकर चौक टेबल वार्ड खड़ाई से आपका दोस्त राम सखी परमानंद
1: जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं?
0: मैम ठीक है, हम बढ़िया हैं
1: जी। चलिए परमानंद जी, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: मैंने प्यार किया का
1: कौन सा
0: टाइटल हम

0: अग्रवाल
1: जी, कैसे हैं अरविंद अग्रवाल जी?
0: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप, शहर का नाम?
0: श्रीनगर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश।
1: जी जी जी
0: जी आज किन मैम से बात हो रही है?
1: आज मैं नीतिका वर्मा हूँ। तो अरविंद अग्रवाल जी, आज आपने फोन किया है फोन करें गीत सुने में, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
0: जी, फिल्म का नाम रहेगा यार आना, तू कर मेरे मन को।

0: भद्र प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ मैम।
1: जी कैसे हैं भद्र प्रसाद जी?
0: बढ़िया हूँ मैम
1: जी। क्या कुछ कर रहे हैं इन दिनों?
0: इस समय खेती की तैयारी हो रही है मैडम।
1: अच्छा, क्या कुछ लगाएंगे?
0: जी धान।
1: चलिए, तो उसके लिए तो आपको बारिश का इंतजार होगा, कब झमझम पानी बरसे।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, कार्यक्रम में आपके गीत की कौन सी फरमाइश है?
0: मोहरा का सुना दीजिए मैम, ना कजरे की धार।
1: जी

0: हरदयाल जाटव, जिला सेफरी,
1: जी
0: सेफरी जिला से।
1: कैसे हैं?
0: बढ़िया मैडम जी, आप कैसी हो?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: हमको बढ़िया गाना सुना दीजिए।
1: हाँ बिल्कुल, आज तो आपका ही पसंद का गीत है जो वो आएगा, तो आपका अनुरोध किस गीत के लिए है?
0: हमें सुना दीजिए जुड़वा फिल्म का, दुनिया में आई हो तो लाभ कर लो, थोड़ा थोड़ा जी, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: जी जी जी बिल्कुल, ये गीत आपके रेडियो सेट पर लीजिए।

0: हेलो
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते। हाँ
1: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से। जी
0: सोमत
1: मैं
0: सिंह,
1: बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ जी। हाँ कौन मैडम बात कर रही हैं?
0: मैं नीतिका वर्मा। जी जी कैसे हैं?
1: जी, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज कौन सी पसंद का गीत है आपका?
1: आज मुझे आप सुनवा दीजिए, सीमा फिल्म का गीत है तू प्यार का सागर है।

0: कविता कंदारी सतना से।
1: जी कविता जी, कैसी हैं?
0: बढ़िया।
1: और आज आपका कौन सा अनुरोध है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: सत्यम श्याम सुंदरम का।
1: कौन सा गीत?

0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका ये गीत, हम आपके रेडियो सेट पर जरूर भेज रहे हैं। और क्या कुछ करती हैं कविता जी?
1: मैं घर में काम करती हूँ
0: और रेडियो हमारे सुनते हैं कि नहीं?
1: बहुत, मैं बचपन से सुनती हूँ,
0: तभी तो हम कह रहे हैं, तो फिर रेडियो भी सुनती हैं आप, बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत दीवानी हूँ मैं रेडियो की।
0: तो ये इसकी दीवानगी ऐसी है ना कि अगर डिस्टरबेंस हो गया किसी दिन, या किसी दिन लाइट नहीं है, या किसी दिन बैटरी खत्म हो गई है, तो फिर आदमी झंझला जाता है कि आज हमें कब मिलेगा सुनने को, है ना।
1: मैं को मतलब जैसे खाना जरूरी है ना, वैसे रेडियो जरूरी है।
0: चलिए, आपकी ये दीवानगी हमें बड़ी अच्छी लगी।
1: सवेरे से ही चालू कर देती हूँ।
0: शुक्रिया आपने फोन किया। आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का गीत सत्यम शिवम सुंदरम का।

0: याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रस्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, जो ये फर्क समझ लेगा वो दीवाना तो होगा। तो श्रोताओं, आपके रेडियो के लिए ये समर्पण, आपकी दीवानगी हमें बहुत अच्छी लगती है। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में। आज बस इतने ही फोन कॉल हम ले पाए।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर और ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभयारण्य भी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रूपये पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कुछ विधेयक भी सदन पर प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान नागरिक संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भारत महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला कल सुबह उरुग्वे के साथ होगा और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है।

घंटाघर चौक खंडवासी, संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। दूसरी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और संदीप पाटिल। आप सबने सुनना चाहा है लम्हे फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत बाजीगर फिल्म से विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजें हैं, गौहर कानपुरी का गीत और अनु मलिक का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नवीद खान। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

अगली फरमाइश भेजी है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेत और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आप सबने सुनना चाहा है कोयला फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक साथी साथियों की आवाजें हैं और इंदिवर का गीत, राजेश शोषण का संगीत।

1942 आई लव स्टोरी लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा जिसे आवाज दी है कुमार सानू ने, जावेद अख्तर का गीत और आरडी वर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और विनोद आर्य ने। कोटवा नारायणपुर से बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अनिल कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। सिंघानी के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, बलबीर स्वामी शास्त्री जी को अवगत कराता है कि जल्द ही अगर कुछ न किया गया तो मजदूर हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। शास्त्री जी हड़ताली मजदूरों का पक्ष लेकर ठाकुर साहब से बात करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाता। हड़ताल जारी रहती है। बसुमती नारायणी से मुंशीगंज वालों द्वारा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना सुनाती है। रोटी के लिए लड़ रहे जानवरों से हड़ताली मजदूर का एक भूखा बच्चा रोटी छीनने जाता है तो जानवर उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इससे दलितों की बैठक में दहशत फैल जाती है। यूनियन का सचिव कालूराम नारायणी से मिलता है और

ठाकुर साहब के कपड़े धोने के काम पर वापस आने के लिए कहता है। नारायणी सोचकर जवाब देने की बात कहकर उसे टाल देती है। हड़ताली मजदूरों का जुलूस नारे लगाते हुए आगे बढ़ता है। यशवंत को रोता हुआ भृगु मिलता है। भृगु बताता है कि उसकी लड़की पार्वती भाग गई है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है।

0: देख प्रभु, चुप हो जा और सारी बात मुझे तू साफ साफ बता, शायद मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। भृगु,
1: मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिए ईश्वर, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।
0: अरे धैर्य रख, हिम्मत से काम ले भृगु, हिम्मत से काम ले।
1: मेरा धैर्य टूट चुका है, हिम्मत जवाब दे चुकी है।
0: हाँ?
1: जिसके घर की आवरू चली जाए, घर की जवान लड़की किसी और के साथ भाग जाए, वो क्या मुंह लेकर जिएगा, क्या मुंह लेकर।
0: लेकिन
1: मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। सारी नदी में कूद कर मैं अभी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा।
0: रुक जा भृगु, भृगु रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा भृगु, भगवान के लिए रुक जा।
1: मैं साई नदी की गोद में समाने जा रहा हूँ, तू वापस लौट जा ईश्वर।
0: तुझे तेरी माँ वसुमती काकी की सौगंध भृगु, माँ विंध्यवासिनी की कसम, रुक जा भृगु, रुक जा। रुक जा भृगु, रुक जा। देख, मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। पहले तू ये बता कि ये सब हुआ कब?
1: कल शाम को।
0: किसके साथ गई?
1: पेट की भूख मिटाने के लिए पीस वर्करों के पास जाया करती थी।
0: हाँ?
1: उनसे खाना मांगती थी, मगर कल शाम को
0: पीस वर्करों के पास जाती थी। अब क्या कोई पीस वर्कर भी फरार है?
1: राजा राम नाम का एक वर्कर भी कल शाम से दिखाई नहीं पड़ रहा। साइट पर जाकर पूछा तो पता लगा कि राजा राम और पार्वती को आखिरी बार कल शाम स्टेशन पर देखा गया था।
0: इसका मतलब दोनों कल शाम वाली पैसेंजर ट्रेन से निकल गए। अब भृगु, तूने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई क्या?
1: नहीं भाई।
0: मुझे तो लगता है कि वर्क साइट पर रश लगाने वाले कांस्टेबलों का भी इसमें हाथ होगा। पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी। पुलिस पार्वती को जरूर ढूंढ निकालेगी और इस राजा राम का अपराध साबित होगा और उसे सजा जरूर मिलेगी। भृगु,
1: अपराध राजा राम का नहीं, तुम्हारी यूनियन का है।
0: हाँ?
1: यूनियन के नेताओं का है।
0: ये तू क्या कह रहा है भृगु? अरे होश में तो है तू?
1: नहीं हूं मैं होश में। तुम्हारे नारे सुन सुनकर मेरे कान पड़ गए हैं। तुम लोग हड़ताल करते हो, घर में औरतें और बच्चे भूखे हैं, और तुम्हारी यूनियन।
0: लेकिन भृगु,
1: यूनियन के नेता खलासी लंगर पर बैठकर नशा करते हैं और नशा करके सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूनियन के किसी नेता में त्याग की भावना नहीं है।
0: अरे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती भृगु, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देख, सब इंसान एक जैसे नहीं होते।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। हम लोग सारी जिंदगी कंपनी का काम करते करते बिता देते हैं, लेकिन हमेशा दूसरों की जूठन खाने वाले जानवरों की तरह धुतकार दिए जाते हैं।
0: अब
1: अंत में परमानेंट होने की आस लिए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं।
0: अरे भृगु, हमारी हड़ताल का मकसद यही है कि हम लोगों के साथ ये भेदभाव खत्म हो, इंसान बराबर हो, कानून सबके लिए समान हो। लेकिन भृगु, ऐसा तब होगा जब हम सब मिलकर यूनियन का साथ देंगे, अपनी एकता को मजबूत करेंगे, मिलजुल कर एक नई क्रांति को जन्म देंगे तब।
1: खामोश यशवंत खामोश, तुम्हारी यूनियन की वजह से हमारे घर की लड़की भाग गई। आने वाले दिनों में और खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी।
0: अरे भृगु,
1: तुम लोगों की देह में

0: जी, ये ठाकुर साहब बीमार क्या हुए? हमारा पीना पिलाना मौज मस्ती का काम सब रुक गया।
1: बोतल का इंतजाम तो मैंने कर लिया।
0: अरे बाप मेरे भाई, क्या बात है, पर तू इसे लाया कहाँ से?
1: अरे वो कंपनी का पुराना टायर बेच कर इंतजाम किया इस बोतल का।
0: लेकिन बाबू भैया, बोतल के साथ जब तक अच्छा खाने का सामान न हो, हा? तब तक पीने का मजा नहीं आता।
1: कह तो तू ठीक रहा है रामू, पर अब खाने का इंतजाम कहाँ से करें? अरे जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची।
0: अरे एक रास्ता है बाबू, एक रास्ता है मेरे भाई।
1: तो बताना जल्दी से वो।
0: अरे क्यों ना हम कंपनी के भंडार में रखी हुई जिलेटिन की छड़ों की चोरी करें, है? और उन छड़ों का विस्फोट हम साई नदी में करें, बहुत सी मछलियां मर जाएंगी और उन्हें भून कर खाने का मजा आ जाएगा।
1: पर रामू, अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो?
0: अरे उसकी चिंता मत कर, स्टोर कीपर मेरी जान पहचान का है।
1: अच्छा,
0: अरे अब पैग दो पैग उसे भी पिला दे।
2: अरे भाई सुनो, ठाकुर साहब से कहो कि राधे श्याम उनसे मिलना चाहता है।
3: कौन राधे श्याम?
2: लेबर इंस्पेक्टर का सहायक।
3: अच्छा अच्छा, आप अंदर जा सकते हैं, ठाकुर साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं।
2: नमस्कार ठाकुर साहब।
4: नमस्कार।
2: कैसी तबीयत है ठाकुर साहब?
4: पहले से बेहतर है, आओ बैठो।
2: माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूँ, आपका आदेश मिला तो आपके दर्शन करने चला आया।
4: अच्छा।
2: रामू मामू कह रहे थे कि आपको मुझसे जरूरी काम है।
4: अरे भाई तुम तो जानते ही हो कि कंपनी के मजदूरों की एक महीने से हड़ताल चल रही है।
2: और सुना है इस हड़ताल की चर्चा लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच चुकी है।
4: भाई यही तो समस्या है, कंपनी पर लगातार दबाव आ रहा है कि मजदूरों के साथ जल्दी से जल्दी समझौता किया जाए। तुम लेबर इंस्पेक्टर के सहायक हो, घुटे हुए हो, तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता
2: है। मजदूरों की यूनियन का सरपरस्त लोकल लीडर शास्त्री है ना?
4: उसका नाम ललो मेरे सामने। उसी की वजह से तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा।
2: मेरी मानो तो उस शास्त्री को खरीद लो, समझो कि हड़ताल की समस्या से छुटकारा मिल गया।
4: अरे राधे श्याम, वो बिकने वाला नहीं है, नहीं तो कंपनी उसे कब का खरीद चुकी होती।
2: ठाकुर साहब, पीतल के भाव सोना बिकते हुए देखा है कभी?
4: नहीं तो।
2: लेकिन आपने यही करने की कोशिश की है, आप थैली का मुंह खोलिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए।
4: क्या तुम शास्त्री को रुपये के सामने झुका सकते हो?
2: लाठ ठपकाते दौड़ा आएगा शास्त्री। हाँ, मेरी कमीशन देना मत भूलना।
4: अरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कमीशन तुम्हें पहले ही मिल जाएगी।
2: ठीक है ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अभी बहुत से काम करने हैं मुझे।
4: हाँ ठीक।

0: बापू।
1: हाँ बेटा।
0: बापू, मछली खा खा कर मन ऊब गया है, आज तो साग रोटी खाने का मन कर रहा है।
1: अरे जगन्नाथ, मेरा राजा बोलता है। ए बेटा, दलितों की बैरक में 20 दिनों से किसी ने भी अन्न का स्वाद नहीं चखा है। बेटा, लोग तो जंगली फल और पेड़ के पत्ते चबा चबा कर पेट भर रहे हैं। बेटा तू है जो साई पर जाकर मछलियां पकड़ लाता है, नहीं तो जगन्नाथ।

0: हम भी पत्ते जवानी पर विवश हो जाते बेटा।
1: नहीं बापू, आज तो मैं रोटी या भात ही खाऊंगा।
0: नहीं नहीं देख जगन्नाथ बेटा, जिद नहीं करते।
1: नहीं बापू, मछली खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है।
0: जगन्नाथ जगन्नाथ, तू तो मेरा राजा बेटा है। नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कल साग रोटी जरूर खिलाऊंगा।
1: सच बापू?
0: हाँ बिल्कुल सच।
1: वादा?
0: अरे वादा है बेटा।
1: तो बापू मैं मछली पकड़ने जाऊँ?
0: हाँ हाँ जा बेटा जा।
1: कल साग रोटी खाने को मिलेगी, कल साग रोटी खाने को मिलेगी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।

0: साई नदी के तट पर तो हम आ गए, अब हमें पानी में जिलेटिन की छड़ का विस्फोट कर देना चाहिए।
1: हमने चारों तरफ देख ली, कोई आसपास है तो नहीं?
0: हाँ देखता हूँ,
1: हमें ऐसा ना हो कि हम भर जाए और जिलेटिन चुराने के आरोप में मुझे उनकी हवा खानी पड़े।
0: अरे कोई नहीं है, चल फटाफट कर दे विस्फोट।
1: कर दो
0: भैया मामू भाई, मैंने किसी बच्चे की चीख सुनी है भाई।

0: क्या हुआ क्या हुआ, ये विस्फोट कैसा था?
1: मैंने भी किसी बच्चे की चीख सुनी थी, किसका बच्चा होगा वो?
0: हाँ जरूर ये हड़तालियों की कारस्तानी होगी।
2: हाँ हाँ उन्हीं का काम होगा ये। अरे अरे देखो तो, अरे यहाँ तो जगन्नाथ की लाश पड़ी है। तो क्या वो चीख इसी की थी? अरे बेटा जगन्नाथ तू तो चला गया पर अपने बाप लीचू को जीते जी मार गया तू।

0: ये जो
1: क्या बात है काका?
0: अरे जल्दी कर, मेरे पीछे आ।
1: माफ करना काका, आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है, अभी मैं कहीं नहीं चल सकता।
2: अरे सिद्ध ना कर लीचू, तो इसी वक्त हमारे साथ चल।
1: क्या बात है यशवंत, तुम लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है?
2: अरे तू हमारे साथ चल, रास्ते में हम तुझे सब बता देंगे।
1: लगता है कोई गंभीर बात है। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलता हूँ।
2: अपना जी कड़ा कर ले लीचू, अपना जी कड़ा कर ले।
1: अरे बात क्या है काका, आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है?
2: अरे धीरज रख लीचू भाई, थोड़ी देर में तेरी समझ में सब आ जाएगा, बस तू हमारे साथ चल।
0: चल चल चल चल चल।

0: अरे कोई बोल था क्यों नहीं बोलता है मेरे जगन्नाथ को क्या हुआ है अरे क्या हुआ जगन्नाथ
1: अरे तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा लीचू में
0: तू झूठ बोलता है झूठ बोलता है अरे मेरा बेटा मर नहीं सकता ये नहीं सकता मेरा बेटा मेरा बेटा तो साग सब्जी खाएगा चल चल चल चल चल मैं तुझे साग रोटी खिलाऊंगा।

0: दाल भात
1: अपने आप को संभाल लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए।

0: सुनो जी, कैसी तबीयत है आपकी?
1: नारायण, जिंदगी से निराश हो चुका हूँ मैं। अब तो भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे
0: बोलने से आपको तकलीफ होती है? कहाँ से आती है? सिर हिम्मत करके मुने का ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ।
1: नारायणी, तू कहीं जा रही है?
0: जी, मेरी मन्नतों के बाद अस्पताल में सफाई का काम मिला है। अब मुन्ना दूध के लिए नहीं रोएगा, आपका इलाज भी हो जाएगा।
1: नारायणी, तू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है तू। भगवान तेरी जैसी पत्नी सभी को दे, सभी को दे।
0: अगर हम पीछे, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। मैं जा रही हूँ, मुझे ख्याल रखना।
2: दरोगा जी आपसे मिलने आए हैं।
3: दरोगा जी मिलने आए?
2: जी।
3: उन्होंने ये नहीं बताया कि काम क्या है?
2: जी नहीं।
3: ठीक है, अंदर भेज दो।
2: जी बहुत अच्छा। दरोगा जी, ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं।
4: अरे यार, रास्ता दे।
3: आइए आइए दरोगा जी, कैसे आना हुआ?
4: ठाकुर, साई नदी में जिलेटिन का विस्फोट करते हुए पुलिस ने कंपनी के दो मजदूरों को गिरफ्तार किया है।
3: क्या क्या नाम है उन दो मजदूरों का?
4: एक का नाम रामू है और दूसरे का बामू।
3: रामू बामू, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं?
4: उन दोनों का कहना है कि वो आपके आदमी हैं, आप उनकी जमानत लेंगे?
3: मैं उनकी जमानत दूंगा? देखिए दरोगा जी, कंपनी के 4,000 मजदूर यहाँ काम करते हैं, क्या उन सबका ठेका मैंने ले रखा है?
4: यानी आप उन दोनों की जमानत देने से इनकार कर रहे हैं, यही ना?
3: जी बिल्कुल ठीक समझा आपने।
4: ठाकुर साहब, पुलिस ने कंपनी की वर्कशाइट की भी तलाशी ली है।
3: पुलिस ने वर्कशाइट की तलाशी ली?
4: जी हाँ।
3: लेकिन वो किस लिए?
4: इसलिए कि रामू और बामू का बयान है कि विस्फोटक जिलेटिन की चोरी उन्होंने वहीं से की थी।
3: वो झूठ बोलते हैं दोनों।
4: झूठ वो नहीं, आप बोल रहे हैं ठाकुर साहब।
3: देखिए, मुझ पर किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं?
4: आरोप? ठाकुर साहब, पुलिस ने जिलेटिन का सारा भंडार खोजकर सारी विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में ले ली है। वर्कशाइट पर भी गैर कानूनी ढंग से विस्फोटक का ढेर लगाने और विस्फोटक की अलग व्यवस्था ना करने के अपराध में कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और सुनो, जुर्माना ना भरने की स्थिति में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
3: क्या?
5: शास्त्री जी, कुछ हड़ताली मजदूरों ने विद्रोह कर दिया है। वो लोग हमें जगह जगह तलाश कर रहे हैं, हमें छिप कर रहना पड़ रहा है।
6: तो मैं क्या करूं?
5: आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कंपनी के अधिकारियों से बात कीजिए, इस समस्या का कोई तो समाधान निकालिए।
7: हाँ शास्त्री जी, मजदूरों को अब विश्वास होने लगा है कि हम लोग कंपनी के समझौता पत्र के खिलाफ नहीं जा सकते। मजदूरों ने कसम खाई है कि वो हम यूनियन वालों को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे।
6: तो मुझसे क्या चाहते हो तुम?
5: पिछली बार हम लोग आपके साथ कंपनी के अधिकारियों से नहीं मिले थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, हमें अधिकारियों से मिलना पड़ेगा।
7: सुनो, तुम लोगों को नेता समझना शर्म की बात है।
5: शर्म की बात?
7: अरे भले ही हड्डियां चूर चूर हो जाएं, देह से मांस सड़कर गिर जाए, लेकिन मजदूरों को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। हड़ताल जारी रखो, समझे तुम?
8: लेकिन शास्त्री जी, अब हमारा मजदूरों के बीच जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ,

0: अगर उनके हक में हमारे पास कोई फैसला हो तो अलग बात है।
1: हाँ। देखो मैं कुछ दिन के लिए मुंशीगंज से बाहर रहूंगा।
0: जी
1: भाई, तुम लोग तो जानते ही हो कि दूर दूर से उधर डालबाऊ की तरफ से भी लोग मुझसे मिलने सलाह लेने आते रहते हैं।
2: हाँ, हाँ। हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए शास्त्री जी, अब हम लोग क्या करें?
1: एक काम करो
0: जी,
1: इस बार तुम लोग खुद मिलने जाओ।
2: हम लोग?
1: हाँ हाँ भाई, तुम लोग।

0: लोग क्या करें?
1: एक काम करो
2: जी,
1: इस बार तुम लोग खुद मिलने जाओ।
0: हम लोग?
1: हाँ हाँ भाई, तुम लोग।
2: ठीक है शास्त्री जी,
0: हम लोग
2: लोग मिल जाएंगे। चलो बलबीर,
3: माँ माँ माँ माँ आज मैंने भरपेट खाया।
4: क्या खाया बेटा?
3: कच्चा मांस।
4: क्या?
3: बहुत दिनों का भूखा था ना, इसलिए।
4: क्या कच्चा मांस?
3: हाँ माँ।
4: कहाँ मिला?
3: वो मुंशीगंज के कसाई है ना, वही फेंक कर गए थे।
4: बेटा थोड़ा मांस मेरे लिए भी ले आता तो मेरा भी पेट भर जाता।
3: क्या करता माँ, वहाँ इतने सारे भूखे लड़के थे कि पल भर में मिट्टी में सना मांस चट कर गए।
4: बेटा कल तू बाकी लड़कों से पहले पहुँच जाना है, और जितना भी मिले सब उठा लाना। कम से कम दो एक दिन के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा।
3: हाँ
4: आगे भगवान मालिक है।
3: बेटा
4: बोल ना, बोल बेटा, तू चुप क्यों हो गया है? हे भगवान, अरे इसके तो हाथ पैर भी नहीं हिल रहे। हे भगवान,
2: अरे क्या हुआ? ये लड़का जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है?
4: देखिए यशवंत बाबू, मेरे बेटे को जाने क्या हो गया है।
2: अरे इसकी तो धड़कन रुक गई है, इसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो
4: गई।
2: देखो रोने से अब कोई लाभ नहीं, इसे जलाने का इंतजाम करो। लेकिन जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होगी, लकड़ी के लिए पैसे कहाँ से हैं? ऐसा करो, इसे साई नदी में ही बहा।

0: वही नारायणी
1: जी।
0: क्या बात है, आज बड़ी देर लगा दी आने में।
1: डॉक्टर साहब, मेरे पति की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा कर, मेरे साथ आ
1: जी।
0: आज बहुत काम है तेरे लिए, सारे अस्पताल की अच्छी तरह सफाई करनी है तुझे, समझ गई तू?
1: जी जी।
0: चल आ इधर।
1: जी चलिए। ये क्या डॉक्टर साहब, इतने सारे बीमार बच्चे, ये सारे बच्चे तो दलित बैरक के हैं ना?
0: हाँ, इन बच्चों ने कसाईयों द्वारा फेंका गया सड़ा कच्चा मांस खा लिया है, इसी से इनकी ये हालत हुई है। देख नहीं रही, उल्टी कर करके सारे अस्पताल का फर्श गंदा कर दिया है। देख, ये सारे फर्श की सफाई तुझे ही करनी है।
1: डॉक्टर साहब, ये बच्चे बच तो जाएंगे ना?
0: देख नारायणी, कई तो मर चुके हैं, और जो जो बचे हैं ना, उनका मरना भी तय है।
1: क्या?
0: हाँ नारायणी।

0: सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रूपये पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से अधिक है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कुछ विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भारत महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला कल सुबह उरुग्वे के साथ होगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज ब्रिटेन में शाम 7 बजे से भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। और अंडर 17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली बार युवा लीग मुकाबले 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। इन्हीं पंक्ति के साथ महिला सभा कार्यक्रम में सुनीता सेन का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के इतिहास का वह चमकता सितारा हैं जिन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। उनका जीवन जलती हुई मिसाल के तरह था। महाराजा छत्रसाल का जीवन का अदम्य साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित था। बहनों, महाराजा छत्रसाल का जन्म 3 संवत 1707 को बिंधे मोर पहाड़ी में उनका जन्म हुआ था। वन भूमि की गोद में जन्मे, वन देवों की छाया में पले इस वीर जन्म का तोप तलवार के बीच जन्म हुआ और बुंदेला परिवार में हुआ। इनके पिता चंपत रायजू थे। 5 वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा के लिए अपने मामा साहिब जी के पास दिलवारा भेज दिया। फिर बड़े भाई साहब के साथ देवगढ़ चले गए। उनका विवाह परमार

की कन्या महारानी देवकुंवरी जी से हुआ। छत्रसाल का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। जब वे मात्र 12 वर्ष के थे तब मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए माता पिता वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्हें फिर युद्ध कला घुड़सवारी की शिक्षा दी गई। उन्होंने मुगलों से मुक्त कराने का संकल्प लिया। उनके पास ना कोई सेना थी, ना धन था और ना ही कोई राज्य था। सिर्फ उनके पास अदम्य साहस, आत्मविश्वास और वीरता थी। मुगलों ने बुंदेला वीरों का अपमान किया। इस घटना से दुखी होकर छत्रसाल ने मुगलों की गुलामी छोड़ने का संकल्प लिया। उस समय शिवाजी महाराज का सितारा चमचमा रहा था। उन्होंने शिवाजी महाराज से भेंट की और मुगल शासक के विरोध में युद्ध करने की प्रेरणा ली। उनके सहयोग से छत्रसाल ने बुंदेलखंड राज स्थापित करने का संकल्प लिया। छोटी सी सेना बनाई, फिर युद्ध किया। उनके साहस और रणनीति ने उन्हें सफलता दिलाई। बुंदेलखंड के अनेक क्षेत्रों में मुगल शासक ने मुक्त कराया और उनकी सेना ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। विजय के बाद महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की। बहनों, शिवाजी महाराज ने उनसे कहा था कि तुम बुंदेला शेर हो, मुगलों की गुलामी छोड़कर अपनी मातृभूमि को आजाद कराओ। उन्होंने ऐसा ही किया, मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और उन्हें सफलता मिली, जो आज के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। करो देश के राज छतारे, हम तुम ते कहूं नहीं नारे। दूर देश के मुगलन को मारे, दपटी दिली के दल संभारे। तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि जो हम सा जाने। जो इत ही तुमको हम राखे, तो सब सुयस हमारे भावे। महाराजा छत्रसाल 22 वर्ष की आयु में छोटी सी सेना लेकर वापस आ गए। उन्होंने जंगलों को अपना ठिकाना बनाया और महाराज छत्रसाल की मुलाकात प्राणनाथ से हुई। उन्हें महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया गया और पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने महाराजा छत्रसाल के जीवन काल में मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारे। उनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी थी। वे न्यायप्रिय थे, उनमें राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान था और जनता के प्रति समर्पण था। बहनों, महाराजा छत्रसाल भारतीय इतिहास के ऐसे महान योद्धा हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में कभी हार नहीं मानी और बुंदेलखंड राज्य बनाया। उनका जीवन हमें साहस, आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के इतिहास के आकाश में एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह हैं, जिनकी चमक सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान का मार्ग दिखाती रहेगी। मध्य प्रदेश का छतरपुर शहर भी उन्हीं के नाम पर बसा है। उनका संघर्षमय जीवन हमें सिखाता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो मन में देशभक्ति की भावना हो तो सब कुछ पाया जा सकता है। उन्हें हम हमेशा यूं ही याद करते रहेंगे। उन्हें बारंबार नमन है।

0: बहनों, अभी आपने कर्मा फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। बहनों, मिलते हैं अब अंतराल के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: बहनों, भारत सरकार ने जनहित में कई योजनाएं चला रही है। जिसके पास बीमारी है और पैसा नहीं है उसे इलाज करवाना है, तो वो आयुष्मान के द्वारा अपना इलाज करवा कर स्वस्थ हो सकते हैं। तो बहनों, हम ऐसे सुनवाने जा रहे हैं ऐसी ही वार्ता, आयुष्मान भारत योजना। वार्ताकार हैं रुचि नागल।
3: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत किसी भी देश की तरक्की की नींव उसके नागरिकों का स्वास्थ्य है। पर भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, वहां बीमारी का मतलब था कर्ज, जमीन बेचना और गरीबी का चक्र। एक बार अस्पताल का बिल आया ना ही कि पूरी जिंदगी की कमाई खत्म। इसी दर्द को खत्म करने के लिए 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इसका नारा है किसी को पीछे ना छोड़ना। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दे रही है। हम इस योजना को 8 भागों में समझेंगे। कैसे काम करती है, क्या फायदे हैं, चुनौतियां क्या हैं और भविष्य क्या है। आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत एक छतरी योजना है जिसके दो बड़े स्तंभ हैं। स्तंभ फर्स्ट, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर। देश भर के 1.5 करोड़ से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उसके उपकेंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा रहा है। ये सेंटर गांव में ही डायबिटीज, बीपी, कैंसर, टीवी की जांच, टीकाकरण, गर्भवती की देखभाल, दवाएं मुफ्त देंगे। मकसद बीमारी को शुरू में

ई पकड़ना। स्तंभ सेकंड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है जो गरीब और वंचित परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस पेपरलेस इलाज देती है। ये पैसा सरकार देती है, मरीज को 1 रुपया भी नहीं देना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ स्कीम है। कौन ले सकता है लाभ? पात्रता की शर्तें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2011 के डेटा पर आधारित है। ये भारत का सबसे बड़ा गरीबी सर्वे है। 6 तरह के परिवार पात्र हैं: कचरा बीनने वाले, रेहड़ी पट्टी वाले, घरेलू कामगार, धोबी नाई, रिक्शा चालक, मजदूर, निर्माण मजदूर। चौथा है हाउस हेल्थ में 1 से ज्यादा कमरे ना हो, पक्का घर ना हो, 16 से 59 साल का कोई वयस्क सदस्य ना हो, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में इंक्लूड श्रेणियां, बेघर निराश्रित, भीख मांगने वाले, आदिवासी परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार, कच्ची दीवार कच्ची छत वाला कमरे का घर, 16 से 59 साल का पुरुष कमाने वाला ना हो, महिला मुखिया हो, दिव्यांग सदस्य वाला परिवार कोई सक्षम सदस्य ना हो, परिवार का आकार उम्र लिंग की कोई सीमा नहीं, 5 सदस्य हो या 20 साल कवर, पहले से कोई बीमार है तो भी कवर, सूची में नाम है तो आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। लाभ पूरे भारत में मिलता है। दिल्ली का कार्ड लेकर आप चेन्नई में इलाज करा सकते हैं। इसे पोर्ट एबिलिटी कहते हैं। 2024 से 70 प्लस उम्र के सभी बुजुर्ग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आयुष्मान व्य वंदना कार्ड के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ले सकते हैं। ये पीएम जन आरोग्य योजना का विस्तार है। पैकेज और सुविधाएं क्या क्या कवर हैं? हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का क्लोटर कवर, मतलब परिवार के कोई भी सदस्य कितनी भी बार बीमार हो, कुल 5 लाख तक। अगर सदस्य का 4 लाख लग गया तो बाकी के लिए 1 लाख बचा। कौन सा इलाज? 1949 से ज्यादा पैकेज प्रोसीजर कवर हैं। इनमें शामिल हैं हृदय की सर्जरी, बाईपास, किडनी ट्रांसप्लांट, डायबिटीज, कैंसर की रेडिएशन सर्जरी, घुटना कुहला बदलना, प्लास्टिक सर्जरी, जलने का इलाज, नवजात शिशु की देखभाल, आंख का मोतियाबिंद ऑपरेशन। क्या क्या मुफ्त? अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और छुट्टी के 15 दिन बाद तक की दवा, जांच, डॉक्टर फीस, बेड, ऑपरेशन थिएटर, खाना सब फ्री। मरीज से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सर्दी जुखाम बुखार ओपीडी इलाज, ये योजना सिर्फ अस्पताल में भर्ती यानी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। प्रक्रिया पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस है। पात्रता जांच, मरीज को आयुष्मान मित्र के पास जाना है। वो आपके आधार कार्ड या मोबाइल नंबर से BIS पोर्टल पर चेक करेगा कि आपका नाम सोशल इकोनॉमिक कास्ट कंसेंस लिस्ट में है या नहीं। आयुष्मान कार्ड बनाना, पात्र मिलने पर आपका बायोमेट्रिक लेकर तुरंत आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। ये कार्ड 2R कोड वाला है। एक बार बन गया तो देश के किसी भी सरकारी प्राइवेट पैनल अस्पताल में मान्य है। स्टेप 3, अस्पताल में भर्ती। बीमार होने पर किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाओ, भर्ती के समय आयुष्मान कार्ड और आधार दिखाओ। अस्पताल खुद ट्रीटमेंट के लिए सरकारी से ऑनलाइन अप्रूवल लेगा। स्टेप 4, इलाज और डिस्चार्ज। अप्रूवल मिलते ही इलाज शुरू। मरीज से पैसा नहीं मांगा जाएगा। डिस्चार्ज के समय भी कोई बिल नहीं, सरकार सीधे अस्पताल को पैसा देती है पैकेज रेट के हिसाब से। भाग 5, आयुष्मान भारत के 7 बड़े फायदे उपलब्धियां। गरीबी से बचाओ, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पीएम जन आरोग्य योजना से हर साल 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा में जाने से बचे हैं। पहले लोग इलाज के लिए
लिए जमीन बेच देते थे, अब नहीं बेचते। महिलाओं की ताकत 55% से ज्यादा कार्ड महिलाओं के नाम पर बने हैं। आयुष्मान मित्र की 50% नौकरियां भी महिलाओं को मिली हैं। मातृत्व और नवजात देखभाल से मात्र मृत्यु दर घटी है। भ्रष्टाचार पर रोक, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बायोमेट्रिक आधारित है।

0: दलाल का चक्कर खत्म, पैसा सीधे अस्पताल को। मजदूर उत्तर प्रदेश का कार्ड लेकर महाराष्ट्र में इलाज करा सकता है। एक राष्ट्र एक कार्ड, रोजगार सृजन। 1 लाख से ज्यादा आयुष्मान मित्र सखी की नौकरियां निकलती हैं। ये 10वीं 12वीं पास लड़के लड़कियां हैं जो अस्पताल में मरीज की मदद करते हैं। देश में पहली बार इतने बड़े लेवल पर बीमारी का डेटा इकट्ठा हो रहा है। इससे सरकार को पता चल रहा है कि किस राज्य में कैंसर ज्यादा है, कहाँ डायबिटीज की जरूरत है, उसी हिसाब से अस्पताल खोले जा रहे हैं। अप्रैल 2026 तक के आंकड़े 55 करोड़ प्लस लाभार्थी, 35 करोड़ प्लस आयुष्मान कार्ड बने, 8 करोड़ प्लस हॉस्पिटल एडमिशन, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुफ्त इलाज। मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉग इन करो, नाम राज्य जिला डालकर सर्च करो, नाम है तो पात्र हो। जन सेवा केंद्र, अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाओ, 30 रुपए फीस देकर वो कार्ड बना देंगे। हेल्पलाइन 14555 या 1800 111 565 पर कॉल करो, हिंदी में पूरी मदद मिलेगी।
1: बहनों, अभी आपने आयुष्मान भारत योजना सुनी। वार्ताकार थी रुचि नांगल। बहनों, बीमारी होने पर घबराना नहीं है, आयुष्मान कार्ड बनवाना है और अपना इलाज फ्री करवाना है और स्वस्थ होना है और लोगों को जागरूक करना है। बहनों, सूरज रोज सिखाता हमको नियमित आगे बढ़ते जाना, नदियां भी संदेश देती रुकना नहीं बस चलते जाना, जो समय का सम्मान करे उनका जीवन खिल जाता है। समय मनुष्य के जीवन की मूल्यवान संपत्ति है, समय अमूल्य निधि है। धन संपत्ति या अन्य वस्तुएं खो जाने पर वापस की जा सकती हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। जो समय का सही उपयोग करता है वही सफल होता है। जीवन में सफलता, उन्नति, सुख समृद्धि समय के सही प्रबंधन से ही आती है। बहनों, समय प्रबंधन में अपने कार्यों को सही योजना के साथ उचित समय पर करना होता है। अपने दैनिक कार्य की जिम्मेदारी और लक्ष्यों को निश्चित समय में पूरा करें। अगर समय का सही उपयोग नहीं होता है तो व्यक्ति को हमेशा तनाव और परेशानियां बनी रहती हैं। वक्त को यूं ही मत गवाओ, हर पल अनमोल होता है। मेहनत करने वालों का हर सपना सफल होता है। बहनों, समय प्रबंधन में एक टाइम योजना या शेड्यूल बनाए, और शेड्यूल बनाना ही काफी नहीं है, ये मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है। इसका संबंध आपके स्वयं निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। समय का दर्पण हमें कभी उदास नहीं करता है, बल्कि ये याद दिलाता है कि गुजरता पल एक अनुभव और नया अवसर देता है। गुलजार साहब ने कहा है कि वक्त चलता रहता है, रुकना तो सिर्फ यादों का काम है। बहनों, कोई भी इंसान है, कोई छात्र हो, नौकरी करता हो, गृहिणी हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। इन 24 घंटों का उपयोग आप कैसे करते हैं, आप पर डिपेंड करता है। आप समय का सही उपयोग करें, समय की बर्बादी ना करें। बहनों, समय प्रबंधन के लिए योजना बनाएं। आपको अगले दिन, सप्ताह और महीने की रूपरेखा लिखनी है। फिर यह तय करना है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। आपको जरूरी काम की प्राथमिकता पहले देनी होगी। आपको कितने समय में कितना काम करना है इसका लक्ष्य भी निर्धारित करना है, तभी आप समय पर पूरा काम कर पाएंगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं करना चाहती हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उन्हें ना कहना सीखिए। जो काम आपका समय बर्बाद कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जरूरी काम को पहले करें। बहनों, आजकल सोशल मीडिया के समय में समय प्रबंधन करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि कार्य करने की कोई योजना नहीं होती तो आखिरी समय में हड़बड़ी होती है, मानसिक तनाव होता है और सही समय पर पूरा काम नहीं हो पाता है। इससे मानसिक शांति, अगर सही समय पर काम होता है तो मानसिक शांति मिलती है और आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, कम समय में बेहतर काम होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि काम के चक्कर में परिवार, दोस्तों को, स्वास्थ्य के लिए समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन समय प्रबंधन आपके दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ आपकी हॉबी, परिवार और आपके स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालने का अवसर देता है। जो लोग समय के पाबंद होते हैं वो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं और तरक्की भी उनकी आगे बढ़ती जाती है। बहनों, समय का प्रबंधन जीवन का प्रबंधन है। परिस्थिति स्थिति के

दूसर का कार करें, आलस को त्याग कर कार करने की क्षमता को बढ़ाएं, तभी आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। समय के इस दर्पण को देखो, क्या बीता क्या पाया है, चेहरे की उन सिलवटों में भी यादों की एक झांकी है। ठहरा नहीं है यह कभी भी, बहती एक नदी है, कभी धूप कभी छांव है, कभी खुशियों का सौगात है। यह दर्पण में जो चित्र देखे उसे संजोना ही जीवन है।

0: बहनों, अभी आपने जीवनधारा फिल्म का गीत सुना। आवाज़ थी आशा भोसले सुरेश वाडकर की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी। अब बहनों, अब मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: बहनों, गर्मी का मौसम आते ही तेज धूप, पसीना, धूल और गर्म हवा में त्वचा को नुकसान होता है। अगर सही केयर नहीं होती है तो सनबर्न, टैनिंग, मुहासे, त्वचा में रूखापन आने लगता है। गर्मी के मौसम में त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। बहनों, गर्मी में बार बार पसीना आता है जिससे त्वचा पर गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए दिन में कम से कम 2 से 3 बार चेहरे को पानी से धोना चाहिए, जिससे धूल बैक्टीरिया हट जाते हैं और मुहासों का खतरा कम हो जाता है। बहनों, गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी पिएं, नारियल पानी, नींबू पानी, पुदीना का पानी और छाछ पीते रहें, इससे त्वचा हाइड्रेट बनी रहती है और चमक बनी रहती है। और गर्मी के मौसम में सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। बाहर जाने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं। गर्मी में हमेशा हल्के और सूती रंग के कपड़े पहनें, जिससे पसीना सूख जाता है, और ढीले आरामदायक कपड़े पहनें। बाहर जाते समय अपने चेहरे को छाता दुपट्टा से ढककर रखें और ताजे फल हरी सब्जियों का सेवन करें। तरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा खाएं, 7-8 घंटे की नींद लें। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगी तो आप स्वस्थ और सुंदर दिखती रहेंगी। आप स्वस्थ रहें।
3: देश की आवाज हो तुम, आकाशवाणी।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है, जिसमें आप सुनेंगे निरंजन कुमार शर्मा के गाए लोकगीत। पहला हास्य गीत, गारी और फिर लोक भजन।

0: रंजन कुमार शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। नीचे सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आज आप सुनेंगे पीयूष झा के गाए कुछ गजलें।

0: पीयूष झा की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: मम्मी, वेयर इज दैट एयरप्लेन गोइंग?
4: माय चाइल्ड, नाउ एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया इज गेटिंग कनेक्टेड थ्रू द स्काइज।
5: व्हेन इंडिया टेक्स फ्लाइट, ड्रीम्स टेक फ्लाइट, सिटीज कनेक्ट, अपॉर्चुनिटीज ग्रो।
4: ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, मोर देन 160 एयरपोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड। द उड़ान स्कीम हैज मेड एयर कनेक्टिविटी पॉसिबल फॉर स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज। डिजी यात्रा हैज मेड एयर ट्रैवल स्मूदर, सिंपलर एंड more seamless.
5: Ministry of Civil Aviation, a new flight for a developing India. 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.

एतवार। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले और भूपिंदर की है, हसन कमाल का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

0: या इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुर्मू कल मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वह यहां 22 जून तक बैतूल, ओंकारेश्वर और जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी और श्योपुर के प्रसिद्ध कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व आरती करेंगी। इसके बाद वे रात्रि विश्राम एनएचडीसी गेस्ट हाउस में करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति बैतूल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति अगले दिन 19 जून को ओंकारेश्वर से सुबह अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 20 जून को शाम में जबलपुर एयरपोर्ट आएंगी। राष्ट्रपति 21 जून को प्रातः जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं ने आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। माईगांव के एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश नाथ काटजू की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधायक भगवान दास सबनानी, विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्वर्गीय काटजू के परिजन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश नाथ काटजू केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले समर्पित सेनानी थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी काटजू ने विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश और समाज की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया। डॉ. यादव ने यहां मीडिया से बात करते हुए नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय में काम कर रही है, ताकि पिछली बार जैसी कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
1: के नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। जहां शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवागमन की थोड़ी कठिनाई है, तो वहां बसें बड़े महानगरों में लगा देंगे। साथ ही साथ वहां रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। भारत सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्पित है कि बच्चों के एग्जाम निर्विघ्न सम्पन्न हो जाए।
0: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को आधार नहीं बनाया जा सकता। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव को कल साप्ताहिक जनसुनवाई में 137 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने मौके पर ही निराकरण योग्य प्रकरणों का संबंधित अधिकारियों से समाधान करवाया। पन्ना जिले में भी आज महाराणा प्रताप और बुंदेल केशरी महाराज छत्रसाल जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा

0: गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए इज कमिटेड। एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
4: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है आदर्श नगर मनोट राज से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइमा शर्मा, बनहरी बड़खीरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेरू पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खान एवं ग्राम पहुरुआ से रामकुमार लोधी, गोविंद यादव।

और उनके सभी साथियों ने। इन्होंने सुनना चाहा है फर्स्ट लव लेटर फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, अनजान का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

करियादंड हट्टा जिला बालाघाट से हुलास राम कटारे, नारेश्वरी कटारे, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर रही मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट। आप सबने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ कभी कभी फिल्म का ये नगमा। साहिर की लिखी गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं कवर कॉलोनी बड़भा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। आप सबने पसंद किया है चांदनी फिल्म का ये गीत, आवाजें श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत शिव हरी का।

ना देख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश भेजी है गोलाघाट बक्सर से विजय केसरी, गौरीशंकर केसरी, शंभू केसरी, नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबने पसंद किया है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की है। समीर के लिखे गीत को सुर में ढाला है नदीम शवण ने।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में G7 सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी।

0: ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को आधार नहीं बनाया जा सकता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज ब्रिटेन में शाम 7 बजे से भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको 7:21 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:33 पर और रात 11:15। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शाम की सभा में कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: स्वागत है साथियों, आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम युवाणी में। आज मैं हूं आपके साथ सावनी पांडे और मेरा साथ दे रहे हैं
1: पीयूष चतुर्वेदी।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे बात करेंगे विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में। हर साल आज ही के दिन यानी 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है,
1: जिसकी घोषणा सन 1994 में UNCCD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के तहत की गई थी।
0: इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे के प्रति जागरूकता फैलाना है।
1: साथियों, इस साल यानी वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम है रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर, अर्थात चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें।
0: इस साल इस दिवस का वैश्विक आयोजन केन्या गणराज्य कर रहा है।
1: साथियों, वैश्विक और भारतीय संदर्भ की बात करें तो वैश्विक स्तर पर 4 अरब हेक्टेयर भूमि प्रभावित है, जिससे 1.5 अरब लोगों के आजीविका पर खतरा बना हुआ है।
0: वहीं भारत में देश की 30% भूमि मरुस्थलीकरण की चपेट में है। इसके प्रमुख कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई, जलवायु परिवर्तन से मानसून अनियमितता, अति शोषित जल संसाधन, गलत कृषि पद्धति जैसे अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है।
1: साथियों, जिसके गंभीर परिणामों से खाद्य सुरक्षा पर संकट, भूमि की उर्वरता घटना, जल संकट और पलायन, जैव विविधता का ह्रास आदि समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।
0: इसके रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जैसे UNCCD का लैंड डिग्रेडेशन यूनिट्रिली लक्ष्य, साथ ही 230 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पुनः जीवित करना है।
1: साथियों, वहीं भारत की पहल की बात करें तो राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम कार्यक्रम, साथ ही 5P फॉर्मूला, पॉलिसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और प्रमोशन शामिल है।
0: साथ ही कुछ अन्य उपाय जिसने वॉटरशेड प्रबंधन और प्रोजेक्ट सुनहरे जैसे अभियान शामिल हैं।
1: तो साथियों, मरुस्थलीकरण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता का प्रश्न है।
0: भारत ने सन 230 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि उपचरित करने का लक्ष्य रखा है।
1: साथियों, हमें याद रखना होगा, धरती बचेगी तो जीवन बचेगा। इसके लिए सरकार, नागरिक और युवा सभी को जल संरक्षण, वृक्षारोपण और सतत कृषि में सहभागी बनना होगा। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जिसका विषय था विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। और अब आपको सुनवाते हैं गीता अहरवार के स्वर में बुंदेली लोकगीत, जिसकी विधा है लोक शैली बद्ध देवी गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीता अहरवार के स्वर में बुंदेली लोकगीत, जिसकी विधा थी लोक शैली बद्ध देवी गीत। अब मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: साथियों, अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। तो अब साथियों, आपके मनोरंजन के लिए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कॉकटेल फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी नीरज श्रीधर और कविता सेठ की।
1: गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था प्रीतम ने।
0: तो साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारी आज की अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है महाराणा प्रताप जयंती।
1: मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप वीर योद्धा, स्वाभिमानी महान राष्ट्रीय भक्त तथा साहसी प्रजापालक थे। इतिहास में उनका बलिदान स्वर्णीय अक्षरों में लिखा गया है।
0: साथियों, महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई सन 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था।
1: साथियों, वे मेवाड़ के वीर शासक थे जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका नाम भारतीय इतिहास में साहस, त्याग और स्वतंत्रता के

0: प्रतीक के रूप में अमर है।
1: सन 1576 में हुआ हल्दीघाटी का युद्ध उनके अदम्य साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है। यद्यपि ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने संघर्ष जारी रखा और अपने राज्य के अधिकांश भाग को पुनः प्राप्त किया।
0: महाराणा प्रताप जी के प्रिय घोड़े चेतक की वीरता भी इतिहास में विशेष योगदान रखती है। चेतक ने अपनी स्वामी की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक साथ निभाया।
1: महाराणा प्रताप जी का जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा देता है। उनसे हमें आत्मसम्मान, देश प्रेम, दृढ़ संकल्प और कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की सीख मिलती है।
0: महाराणा प्रताप जयंती केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके आदर्श को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेने का भी दिन है।
1: साथियों, महाराणा प्रताप जी के महान व्यक्तित्व, उनके त्याग, साहस और देशभक्ति को नमन करते हुए हम कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहेंगे। वीरों की गाथा गाता है भारत का सम्मान, महाराणा प्रताप थे मेवाड़ की शान। स्वाभिमान की ज्योति लेकर जीवन भर लड़ते रहे, मातृभूमि की रक्षा हेतु हर संकट से भिड़ते रहे।
0: चेतक जैसा मित्र था जिसने साथ निभाया, त्याग साहस और देश प्रेम का अमर संदेश सुनाया। आओ हम सब प्रण करें, उनके आदर्श अपनाएं, सत्य साहस और सम्मान से भारत का मन बढ़ाएं। तो साथियों, ये तो हमने आपसे बात की महाराणा प्रताप जयंती के बारे में,
1: और अब आपको सुनवाते हैं गीता अहिरवार के स्वर में बुंदेली लोकगीत, जिसकी विधा है लोक शैली हास्य गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीता अहिरवार के स्वर में बुंदेली लोकगीत, जिसकी विधा थी लोक शैली हास्य गीत। साथियों, अब मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: साथियों, अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। तो एक बार फिर से आपके मनोरंजन के लिए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे हाईवे फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी एआर रहमान की।
1: गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था एआर रहमान ने। तो साथियों, अब हम बात करते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर। दोस्तों, अब हमारी अगली चर्चा का विषय है महाराजा छत्रसाल जयंती। तो आइए हम बुंदेलखंड के वीर शासक महाराजा छत्रसाल जी के बारे में बात करते हैं।
0: शेरे बुंदेलखंड, प्रजा के रक्षक महाराजा छत्रसाल जी का जन्म 4 मई सन 1649 को बुंदेलखंड प्रांत के जंगलों में हुआ था।
1: युवा अवस्था से ही उन्होंने विदेशी शासन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
0: ये महान साहस, पराक्रम और स्वाभिमान का प्रतीक माने जाते हैं।
1: इन्होंने अपनी वीरता, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प के बल पर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की।
0: महाराजा छत्रसाल के शासन काल में जनता को सुरक्षा, न्याय और विकास के अवसर प्राप्त हुए। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और धर्म के भी रक्षक थे।
1: साथियों, उनकी महान राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम एवं जनता के रक्षक होने से उन्हें शेर ए बुंदेलखंड कहा जाता है।
0: तो साथियों, उनके जीवन से प्रेरित प्रेरणा लेकर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम उनके आदर्शों को जीवन में अपनाएंगे एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे और समाज में एकता, सद्भाव तथा न्याय की भावना को मजबूत करेंगे। तो साथियों, ये तो हमने आपसे बात की महाराजा छत्रसाल जयंती विषय पर, और अब यहाँ रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: साथियों, पुनः स्वागत है आपका इस अंतराल के बाद। साथियों, अब आपको सुनवाते हैं गीता अहरवार के स्वर में बुंदेली लोकगीत, जिसमें विदा है लेद।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीता अहरवार के स्वर में बुंदेली लोकगीत, जिसमें विधा थी लेद। तो साथियों, अब कार्यक्रम में आगे चलते हुए हम दे देते हैं आपको हमारी आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। साथियों, CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
1: पद का नाम है मैनेजमेंट ट्रेंड्स।
0: पदों की संख्या है 660।
1: शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार भिन्न भिन्न है।
0: आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
1: आवेदन की अंतिम तिथि है 21 जून 2026।
0: साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.coalindia.in पर विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, अब इसके बाद हम आपके मनोरंजन के लिए आपको एक बार फिर से ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे आशिकी 2 फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की।
1: गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था जीत गांगुली ने।
0: तो साथियों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको बता देते हैं हमारे कल के कार्यक्रम के बारे में। कल आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स,
1: और होंगी महत्वपूर्ण चर्चाएं और होगी रोजगार सूचनाएं।
0: तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपने मित्र पीयूष चतुर्वेदी,
1: सावनी पांडे को नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र।

है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गीत। आवाज है डोमिनिक क्लिंटन और लॉय मेंडोसा की। शब्द रचना जावेद अख्तर की है, संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का।

अभी आप सुन रहे थे डोमिनिक क्लिंटन और लॉय मेंडोसा की आवाज में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गीत। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी, संगीत निर्देशन था शंकर एहसान लॉय का। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप से ये गीत। आवाज अमिताभ बच्चन, मोनाली ठाकुर और शेखर की है।

अभी आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन, मोनाली ठाकुर और शेखर की आवाज में बुढ़ा होगा तेरा बाप फिल्म का गीत। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं बिन बुलाए बराती फिल्म का गीत। आवाज है ऋतु पाठक की, शब्द रचना और संगीत निर्देशन है आनंद राज आनंद का।

ऋतु पाठक के गाए बिन बुलाए बाराती फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडिया वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद शाम 6 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का भाग 1308। 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, कलाकार होंगे कल्लू कुर्मी। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन का भाग 13। इसके अलावा होगी भेंट वार्ता भूमि विन्यास एवं जुताई प्रबंधन द्वारा उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार विषय पर ज्योति कुम्हाकार से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। आज के सीख का विषय होगा जब बरसे उतरा धान खाए कुतरा। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा रात 8 बजे। दिल्ली से आज हम अनुप्रसारित करेंगे रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय है और रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। ये तो थे सभा के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत आप सुनेंगे बुंदेली वार्ता, बुंदेली कवि गंगाधर व्यास, वार्ताकार होंगे पंडित बाबूलाल द्विवेदी। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:30 और रात 8:35 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल हम अनुप्रसारित करेंगे सुबह 8:30 पर वतन का राग, दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, दिन में 12 बजे आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, 2:30 पर आपकी फरमाइश। सांध्यकालीन सभा में शाम 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 1309 और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही कल हम अनुप्रसारित करेंगे रात 8 बजे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष

विरासत। सुबह 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम के कलाकार होंगे रामकिशुन मिश्रा। 9:30 पर एक ही गायक में आप सुनेंगे एलिशा चिनाय के गाए चंद फिल्मी गीत। सुबह 10:05 पर होगा रसावतरण, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे डॉक्टर अनुज भदौरिया, शफीकुर रहमान कशफी और फरीद बेग। 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन में 1 बजे महिलाएं सुनेंगी महिला कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता, बुजुर्गों की देखभाल में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगी श्वेता झा। इसके अलावा सौंदर्य सलाह। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। इसके अलावा होगी रोजगार सूचना। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम के कलाकार होंगे शंकर लाल प्रजापति। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम।

श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। इसके अलावा होगी रोजगार सूचना। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम के कलाकार होंगे शंकर लाल प्रजापति। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही होगी भेंटवार्ता हरी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव और लाभ विषय पर भूपेंद्र सिंह बैस से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। आज के सीख का विषय होगा बिजली की चोरी रोकें। दिल्ली से काला मानू प्रसारित करेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट और 10:00 हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी@90 और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष के उपलक्ष में आकाशवाणी छतरपुर से सेवानिवृत्त उद्घोषक श्री हर्ष पांडे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 5:58 होने को है। न्यूज हेडलाइंस हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियां में G7 सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इंडिया ए ने ट्राई नेशन सीरीज के करो या मरो मैच में अफगानिस्तान ए को 101 रन से हरा दिया है। दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में 320 रन का टारगेट चेज कर रही अफगानिस्तान ए 36 ओवर 5 गेंद में 218 रन पर ऑल आउट हो गई। और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए 403 रन का विशाल लक्ष्य तय किया है। भारत की ओर से शुभमन गिल ने 154 और ईशांत किशन ने 125 रन बनाए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
1: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई

0: और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे
3: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी

0: से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
1: बड़े बहादुर थे ये।
0: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
2: दादी दादी हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
1: वो कहाँ के रहने वाले थे?
0: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
1: अच्छा।
0: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
2: अच्छा।
0: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
1: दादी उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
1: अच्छा दादी जी। लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: अच्छा क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी फैश करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
1: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
5: खुद करनी होगी, सही कहे।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
6: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसा चल नहीं सकता, नहीं ऐसा चल नहीं
1: सकता। उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
7: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे हीरो ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
8: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
7: भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था।

0: शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
1: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
2: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
3: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
4: ए मंगल पांडे, वॉच आउट!
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
5: भारत माता की जय! भारत माता की जय!
6: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
2: अरेस्ट करो!
4: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
6: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Come, bande kau, thi khana mangta hai. Durant, hospital bhejao.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे

0: मुंडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
1: इसके बाद क्या हुआ दादी?
0: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैल बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई मंगल मस्ती में चूर चलल पहला बागी मशहूर चलल गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल गोली के तुरंत निशान भईल जननी के भेंट परान भईल आजादी का बलबेदी पा मंगल पांडे बलिदान भईल जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: काशु बेटी तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ हम नाश्ता कर लेंगे पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना। मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ
6: लो देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ मुझे परेशान मत करना समझे।
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता यही ले आओ दीदी। ठीक है मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा। ये तो देखो
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
6: अच्छा माँ कौन आप लोग कौन कहिए किससे मिलना है। अरे
8: हमें अंदर आने दो।
6: अरे क्यों

0: रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
2: लड़की हट, ये चाकू देख रही है ना?
0: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
1: अरे
0: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
1: हट
0: रास्ते से।
1: क्या हुआ? देखो जल्दी आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
2: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
2: ये चाकू देख रही है ना?
1: छोड़ दो,
3: मुझे मत मारो। कुछ मत करो।
1: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम।
2: जल्दी,
1: याद नहीं कहाँ रखी है।
0: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
1: अरे मेरे बात को छोड़ो,
3: मेरी माँ को छोड़ो।
2: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
0: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
1: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
4: देवेंद्र।
5: हाँ दीदी।
4: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
5: अच्छा,
4: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
5: अच्छा।
4: हेलो।
6: हाँ बेटा बोलो।
4: पापा।
6: हाँ
4: पापा।
6: हाँ बोलो बेटा।
4: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
6: कौन घुसा है?
4: माँ को बहुत मार रहे हैं।
6: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
4: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
5: अच्छा।
4: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ।
7: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
8: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
9: वाह वाह वाह,
8: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
10: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
8: देखो ना, सबकी जान
10: बहादुर है मेरी बच्ची।
7: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
11: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
12: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
11: नमस्कार।
13: उमंग, उमंग,
14: उमंग। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम दिल्ली
15: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज इस कार्यक्रम के कलाकार हैं कल्लू कुर्मी। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं कल्लू कुर्मी के स्वर में ये हास्य लोक रचना। हारमोनियम पर है सतीश कुमार पांडे, बैंजो पर लखनलाल वंशकार और ढोलक पर संगत कर रहे हैं गोविंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कल्लू कुर्मी के स्वर में ये बुंदेली हास्य लोक गीत। हारमोनियम पर थे सतीश कुमार पांडे, बेंजो पर लखनलाल वंशकार और ढोलक पर संगत कर रहे थे गोविंद। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं एक और लोक भजन, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कल्लू कुर्मी के स्वर में ये चेतावनी। हारमोनियम पर थे सतीश कुमार पांडे, बेंजो पर लखनलाल वंशिकार और ढोलक पर संगत कर रहे थे गोविंद। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं एक और चेतावनी, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के।

0: अभी आप सुन रहे थे कल्लू कुर्मी के स्वर में ये चेतावनी। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सुरेश कुमार पांडे, बैंजो पर थे लखनलाल वंशकार और ढोलक पर संगत कर रहे थे गोविंद। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं गारी, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: अभी आप सुन रहे थे कल्लू कुर्मी के स्वर में ये गारी। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं चौकड़िया, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।

0: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा

कल्लू कुर्मी के गाए इस चौकड़िया के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हारमोनियम पर सगत कर रहे थे सतीश कुमार पांडे, बेंजो पर लखनलाल वंशकार और ढोलक पर थे गोविंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। धर्मेंद्र अग्रवाल निवासी मोहल्ला जैन प्रकाश नगर थाना कोंच जनपद जालौन उत्तर प्रदेश से सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी सुष्मिता अग्रवाल उर्फ वर्षा, जिनकी उम्र करीब 28 वर्ष है, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा, ये बैगनी रंग की साड़ी और पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। ये 11 अप्रैल 2026 को करीब दोपहर 1 बजे से बाजार जाने के लिए कहकर निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना मिलती है, कृपया इन नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। पुलिस अधीक्षक का मोबाइल नंबर है 9454400279। क्षेत्राधिकारी का नंबर है 9454401431। प्रभारी निरीक्षक का संपर्क सूत्र है 9454403597 और पारिवारिक जनसंपर्क सूत्र है 8887570407 और दूसरा नंबर है 9198753894। गुमशुदा युवती का नाम सुष्मिता अग्रवाल उर्फ वर्षा, पति का नाम धर्मेंद्र अग्रवाल और ये 11 अप्रैल 2026 से लापता है। लीजिए अब सुनिए एक और गुमशुदा युवती के संबंध में सूचना। गुमशुदा युवती का नाम श्रीमती नेहा देवी, पति का नाम सुरेश कुमार कुशवाहा,

ये ग्राम पहाड़ गांव कोंच जालौन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। गुमशुदा युवती की उम्र करीब 28 वर्ष है, रंग गेहुआ, लंबाई करीब 4 फुट 10 इंच है। ये दिनांक 19 मई 2026 को रात्रि 2 बजे लगभग अपनी दो बच्चियां बानी और पलक को छोड़कर कहीं चली गई हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इन नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। पहला संपर्क सूत्र है 8756796676। एसआई का संपर्क सूत्र है 8299302871। थाना प्रभारी कैलिया का संपर्क सूत्र है 9454403595। गुमशुदा युवती का नाम एक बार पुनः सुन लें। नाम है श्रीमती नेहा देवी, पति का नाम है सुरेश कुमार कुशवाहा। ये ग्राम पहाड़ गांव कोंच जालौन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ये 19 मई 2026 से लापता हैं। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं।

0: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा कल से होगा शुरू। इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा समान नागरिकता संहिता UCC विधेयक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को विकसित भारत के आधार स्तंभ बताया। और मानसून की रफ्तार थमी, प्रदेश में अगले सप्ताह दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल इंदौर पहुंचेंगी, इसके बाद वह बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही श्री ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। शुक्रवार 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। शनिवार 20 जून को श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में

0: शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। सोमवार 22 जून को श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। डॉ यादव ने आज विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में एक समान कानून लागू करने की भावना में कुछ भी गलत नहीं है और यह समाज में समानता लाने का प्रयास है। उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में यूसीसी लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे, उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 5 दिवसीय सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से कुल 207,57,00,000 रूपये की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें करीब 188,42,00,000 रूपये की लागत के सामाकोटा बैराज के लोकार्पण सहित क्षेत्र के 13 उप स्वास्थ्य केन्द्र के नए भवनों, महाविद्यालय एवं स्कूलों के नवीन भवनों तथा नवीन विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि सामाकोटा बैराज उज्जैन जिले में जल संरक्षण को नई ऊर्जा देगा। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और खेतों को नई संजीवनी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के साथ ही बैठक रणनीतिक से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके राजनयिक संपर्क तथा प्रमुख मंचों पर वैश्विक नेताओं के साथ उसकी सक्रिय बातचीत को दर्शाता है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा पटना में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है।
1: 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं, तो नंबर एक, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी हैं, यहाँ जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है। 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए हैं। 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप्स, लगभग 1,60,000 करोड़ का निवेश अकेले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहा है।
0: उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए समाज को कुछ उपयोग को बढ़ावा देना

0: तथा प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का एक पौधा अपने बुजुर्गों के नाम अभियान आज से शुरू हुआ। बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने वृक्षारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भव्य आम महोत्सव का आयोजन किया गया। जबलपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 19 जून को भंवरताल गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

पंचो, आज की ग्राम सभा में स्वीकार करो अपने छोटन भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम। और देखो भैया, इस समय पे अपन देख रहे हो कि दिन भर की जो गर्मी है वह इतनी तेज पड़ रही है कि भैया निकलवे की बेरा नहीं होता है ना। बिल्कुल लगन लगत के अब जब संजा हुई है तब ही अपन घर से निकले, लेकिन अपन ने जो एहसास करू है कि झुंझा गर्मी पड़ रही है इको मुख्य कारण का है। तो अपन ने देखो ये कि जब भैया पेड़ पौधा कम होते हैं है ना, और ज्यादा मात्रा में इन्हें काटो जाते हैं, इनको भैया दोहन करो जाते हैं, तो जो अपनी धरती है अब उको तापमान बढ़न लगा थे है ना। और जब धरती को तापमान बढ़े तो अपनी जो उपजाऊ मिट्टी है बा भैया कहाँ होने लगत के उमे उकी उपजाऊपन कम होने लगत, और उमे भैया रेत की मात्रा बढ़न लगत, जिन्हें अपन जीखों अपन कह सकत कि भैया मनुस्थली होने लगत है ना। जीखों कई बार अपने पंच भैया अपनी बुंदेली भाषा में कहें तो

0: बंजर हो जात। अब अपन सोचा थो कि छुट्टन भैया आज जर चर्चा लेके काय बैठ गए, तो जो हम अपन को बता दें भैया कि आज है विश्व मनुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, और जो भैया हर साल 17 जून को विश्व स्तर पे मनाओ जाते है। अच्छा, इके मनावे को कारण का है? तो इके मनावे को कारण भैया जो ही है कि जो अपने मिट्टी की क्षरण है, यानी अपनी मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वा दिन प्रतिदिन कम हो रही है ना, और दिन प्रतिदिन कम होवे को कारण जो ही है कि पेड़ पौधा कट रहे हैं, है ना, रासायनिक दवाइयां को भैया प्रयोग हो रहा है, इसे अपनी मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो रही है। तो इके प्रति अपने जो पंच भैया हैं या अपनी जनता है या अपने जो किसान भैया हैं उनको जागरूक बनावे के लाने, और भैया भूमि को संरक्षण और सुधार को बढ़ावा देवे के लाने अपन हर साल 17 जून को विश्व मनुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाऊ थे। अब ई की शुरुआत सबसे पहले भैया कब भई थी? तो ई की शुरुआत सबसे पहले भैया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में भैया एक प्रस्ताव पारित करो तो जी के अंतर्गत जो निर्णय लाओ तो कि अपन हर साल विश्व मनुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मना है। इसे जो हुई है कि जो अपने पंच भैया हैं अपनी जो उपजाऊ जमीन है ऊखो उपजाऊ बनाए रखें, और ऊखो उमे जो कमी है या जो प्रकार से भूमि बंजर हो रही है तो भूमि को बंजर होवे से रोके, है ना। तो ई कारण से अपने पंच भैया को अपनी जो खेती है अपने जो आसपास की जमीन है ना उते अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधा लगाएं, उनमें ज्यादातर अपन भैया रासायनिक की जगह देसी खाद को प्रयोग करें, है ना, जी में उकी जो उत्पादन क्षमता है वह बनी रहे और अपनी भूमि बंजर होवे से बची रहे, है ना। आगे हम अपन से बतकाव करें, ई के पहले थोड़ा सा रुकत है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: तो देखो भैया, अपन ने बात करी थी काय की, अपन बात कर रहे थे अपनी जो फसल है अपने जो खेत है उनमें रासायनिक की जगह अपन देसी खाद को प्रयोग करें, और इस समय अपन देख रहे हो कि अब अपने पंच भैया अपने खेतन की तैयारी करन लगे हैं, और कई जगह तो हमने देखो है कि पंच भैया ने अपने खेत में भैया जुताई भी कर रही है, सिर्फ इंतजार है काय को, पानी बरसवे को, है ना। तो यदि अपने पंच भैया ने जुताई कर दी है और फसल के लाने बुवाई के लाने तैयार है तो भैया वे रासायनिक खाद की जगह पे अपनी कंपोस्ट खाद को प्रयोग करें, है ना, और इको उपयोग अपन को इको प्रयोग अपन को बुवाई और रोपाई के 15 से 20 दिन पहले जब अपन खेत तैयार कर रहे हैं तब अपन कंपोस्ट खाद उमें मिलाएं। अच्छा, इसे फायदा का हो थे? इसे भैया फायदा जो हो थे कि एक तो देखो भैया पैसा की बचत है ना, दूसरी बात जोन अपनी फसल है सो बा फसल की पैदावार बढ़त, तीसरो देसी तरीका आए जो, और चौथी सबसे बड़ी बात जो है कि अपनी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है उत्पादन क्षमता है बा बढ़त है। तो हमारा तो सब पंच भैया से यही कह वो है कि अपने पंच भैया इस समय पे अपने जो खेतन की जुताई कर रहे हैं और खाद को प्रयोग कर रहे हैं तो उमे भैया अपने पंच भैया कंपोस्ट और देसी खाद को प्रयोग करें, जिसे अपनी मिट्टी की उत्पादन क्षमता बनी रहे, अपन को कम खर्चा हो और अधिक लाभ प्राप्त हो। कैसे? जब अपन को अधिक लाभ प्राप्त हुई है तब ही अपन भैया सही मायने में किसानी कर पे हैं और खुशहाल रहे हैं। ऐसे ही अपने पास एक जानकारी है, कहो तो अपने पंच भैया को सुनवाएं, लेकिन सुनवावे के पहले एक बार फिर से थोड़ा सा रुकत है।
3: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक

0: इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और भैया एक बार अपने पंच भैयन को ग्राम सभा कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और अपने ग्राम सभा में आई थी ज्योति कहार और इनने एक अपन को जानकारी दी थी के भूमि विन्यास एवं जुताई प्रबंधन द्वारा उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार और इनसे बतकाव करो तो अपने रविन्द्र कुमार प्रजापति भैया ने तो अपन सुनते हैं जा भेंट वार्ता के कौन प्रकार से अपन अपनी भूमि विन्यास और जुताई प्रबंधन से लाभ ले सकते हैं।
3: हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण भेंटवार्ता लेकर आए हैं और जिसमें आज हमने विषय रखा हुआ है भूमि विन्यास एवं जुताई प्रबंधन द्वारा उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य में सुधार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में कृषि विशेषज्ञ पीएचडी स्कॉलर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से ज्योति कहार जी हैं। मैडम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में।
4: थैंक यू सर
3: जी। जैसा कि हमारा आज का विषय है भूमि विन्यास, तो सबसे पहले हम ये जानना ही चाहेंगे कि भूमि विन्यास आखिर क्या है और हमारे किसान भाइयों को कैसे समझाएंगे।
4: सबसे पहले तो नमस्कार किसान भाइयों। भूमि विन्यास का मतलब होता है सर, खेती करने से पहले जो हमारी फील्ड है उसको एक व्यवस्थित रूप में बनाना, जो हमारा खेत है मॉइस्चर बना रहे, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन रहे, और जो हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं और जो वीड पॉपुलेशन बढ़ रही है उन सबको देखते हुए भूमि के विन्यास को ऐसे व्यवस्थित रूप में बनाए रखने को भूमि विन्यास कहते हैं। इसमें भूमि विन्यास में आते हैं जैसे रिज फरो और होता है ब्रॉड बेड स्ट्रिप रिज मेथड। ठीक है, ब्रॉड बेड में क्या होता है, जो हमारा बेड होता है वो जो हमारी फील्ड होती है उससे ऊपर की तरफ उठा होता है, जिससे जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है जैसे इरिगेशन का वाटर जो हमारी खेतों में ज्यादा अधिक होने से लॉजिंग प्रॉब्लम हो जाती है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा बेड ऊपर है तो जब इरिगेशन हम देंगे या हैवी रेनफॉल होगा तो क्या होगा, उससे जो अत्यधिक जल है उसका निकास हो जाएगा और जितना आवश्यक है सिर्फ पौधा से उतना ही लेगा।
3: तो इस तरह से भूमि विन्यास हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और फसल उत्पादन में हमारे किसान भाइयों को क्या क्या मदद मिल सकती है भूमि विन्यास से, वो क्यों करें? मतलब
4: फसल उत्पादन से जैसे कि पहले के लोगों में ऐसा होता था पारंपरिक जुताई होती थी जो अधिक से अधिक जुताई करते थे, जिससे कि क्या होता है अभी हमारे एडवांस चीजें आ गई हैं जैसे जीरो टिलेज, बिना जुताई के बुआई करनी, बिना जुताई के बुआई करनी है, जिससे क्या होगा ना कि हमारे जो फील्ड है या एरिया है उसपे रेसिड्यूज जो प्लांट के अवशेष होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो सोइल के इरोजन को रोकते हैं, सोइल के मॉइस्चर को बढ़ाते हैं और माइक्रोब एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है फॉर्म नाइट्रोजन फॉर्म में, जैसे ऑर्गेनिक मैटर मिल गया तो वो नाइट्रोजन फॉर्म में वो यूज करेंगे, मॉइस्चर मिल रहा है, इसीलिए जीरो टिलेज का यूज करना चाहिए और मिनिमम टिलेज है और कंजर्वेशन अभी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है जो हमारे अभी इंडिया में चल रहा है।
3: मैडम जी ने टिलेज यानी जुताई की बात कही है तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए कि जुताई आखिर क्या होती है और सामान्य जुताई, गहरी जुताई कई तरह से करते हैं तो ये क्या अंतर होता है और क्यों जरूरी होती है?
4: देखिए गहरी जुताई से सोइल का जो गहरी जुताई जो हम पूर्वज हमारे जो करते आ रहे हैं उससे क्या हो रहा है ना, हमारी जो सोइल है वो खराब हो रही है। कुल मिलाकर बोला जाए तो आप तो देखेंगे कि सोइल का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, सोइल में मतलब फर्टिलिटी को डिक्रीज कम होते जा रही है, इसीलिए हमको अब ये न्यू जो नए हैं जैसे जीरो टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, ये टिलेज का उपयोग करना है।
3: हमारे देखते हैं कि पारंपरिक हम जो मेड़ देखते हैं खेतों की तो बहुत पहले मोटाई हुआ करती थी, अब धीरे धीरे कम हो गई है मेड़ की जो मोटाई है, तो मेड़ों का क्या उपयोग है?
4: हम मेड़ों का उपयोग इसलिए करते हैं कि जो एक फील्ड है दूसरी फील्ड से प्रोटेक्टर है।
3: जी
4: मतलब एक फील्ड का कुछ भी जो हम अप्लाई कर रहे हैं या अलग कोई स्पीसीज वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, उस वो दूसरी वाली स्पीसीज को इफेक्ट ना करे।
3: जी हाँ जी, बिल्कुल। कई बार हम लोग उठी हुई क्यारी का उपयोग करते हैं, तो उठी हुई

0: क्यारी का क्या महत्व हमारे
1: उठी हुई क्यारी का मतलब महत्व ये है, जो खेती है उसमें उठी हुई क्यारी का महत्व ऐसा है कि जब क्यारी उठी होगी तो सबसे पहले तो जो उठी हुई क्यारी होती है उसका यूज जहाँ ज्यादा पानी गिर रहा है, उसका उपयोग जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पे की जाती है। उससे क्या होता है कि रेनफॉल हैवी ज्यादा अत्यधिक बारिश होने से वाटर ज्यादा आ रहा है सरफेस पे, तो वो ड्रेनेज हो जाएगा, निकास हो जाएगा उसका, और जो हमारे प्लांट है उसको इफेक्ट नहीं होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए जहां पर ज्यादा बारिश होती है उन एरियाओं में हम उठी हुई क्यारी का उपयोग करते हैं।
0: हमारी बातचीत की शुरुआत में दो शब्द आए थे, रिज और फरो। ये रिज और फरो जो प्रणाली है वो किस तरह से काम करती है और हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा सरलीकरण में समझा दीजिए।
1: रिज और फरो जैसे हम आलू की खेती करते हैं या गन्ने की खेती करते हैं, उसमें एक मतलब एक उठा हुआ भाग होता है और एक ऐसे नाली जैसा बना होता है।
0: जी जी।
1: जो हमारा उठा हुआ भाग है उसका मतलब हम जैसे ये रिज और फरो मेथड यूज करें, उसमें 15 सेंटीमीटर हाइट में ऊपर सोइल को उठाकर बना दिया जाता है। एक रिज है उससे दूसरी क्या रिज है फिर उसको उठाया जाता है, तो जो बीच का होता है वो फरो है और जो रिज है वो दोनों साइड दो रिज हो जाएगी और दोनों रिजों के बीच में 30 सेंटीमीटर, वो क्रॉप टू स्पीसीज पर डिपेंड करता है। जैसे मैज का क्रॉप ले लिया, मैज का क्रॉप लेंगे तो हम वही 45 सेंटीमीटर पे एक दूसरे से रख देंगे।
0: जी, हम भूमि विन्यास की बात कर रहे थे तो जहाँ खेती पूरी तरह वर्षा आधारित है तो उसमें भूमि विन्यास का कितना महत्व पड़ जाता है?
1: जहाँ पे वर्षा आधारित खेती है वहाँ पर भूमि विन्यास का अत्यधिक महत्व है। अत्यधिक वर्षा से होने वाली जो प्रॉब्लम है वहाँ पे रिज का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि हम जब रिज बनाएंगे फरो के द्वारा हमारा जो जल है वो निकास हो जाएगा, जिससे कि हमारी जो दूसरी क्रॉप है वो इफेक्ट नहीं होगी।
0: जी जी।
1: और क्रॉप प्रोडक्शन को अत्यधिक प्राप्त होगा और जो प्लांट्स है उनकी लॉजिंग प्रॉब्लम भी कम होगी, क्योंकि हम प्लांट होता है वो रिज पे बुआई करते हैं।
0: जी, जी।
1: तो आप उसकी अर्थिंग करोगे तो उससे एक्स्ट्रा वाटर और लॉजिंग का प्रॉब्लम ये सब।
0: जैसे हम देखते हैं मैडम जी कि कई जगह भूमि ढलान वाली है।
1: हाँ।
0: तो वहाँ ढलान वाली भूमि में हमें देखिए मृदा का भी संरक्षण करना है, जल का भी संरक्षण करना है, तो क्या उपाय अपनाए जाते हैं कि दोनों संरक्षित रहे, खेती अच्छे से हो?
1: ढलान वाली क्षेत्र में हम सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर हम एक मतलब एक स्टेप दूसरी स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप ऐसा बना बना के सीढ़ी नुमा हम छोटे छोटे फील्डों को डिवाइड करके वहां पर खेती कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक फील्ड का जो एक्स्ट्रा वाटर है या जो निकल रहा है वो दूसरी फील्ड में जा सकता है, दूसरी फील्ड से तीसरी।
0: हमारे शुरुआत में जुताई की बात हुई थी टिलेज की, तो उसमें कई वेरायटी होती है, समतल जुताई, गहरी जुताई, एक शून्य जुताई भी होती है।
1: हाँ, जीरो उसी को बोलते हैं।
0: ये क्या होता है
1: जीरो? मतलब इसमें होता है कि हम खेत में बिना जुताई के बिना उसके डायरेक्ट फरो ओपनिंग करके सीड को सोइंग कर देते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, इससे पहले फील्ड की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले तो फील्ड की प्रिपरेशन करने के लिए हमको पेराकोड या डाइकोड हर्बिसाइड से पूरी फील्ड को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हम किसी भी इम्प्लीमेंट का यूज नहीं करते, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर, ये सब यूज नहीं करते, प्लॉइंग वगैरह नहीं करते। तो सबसे पहले फील्ड को क्लीन करने के लिए पेराकोड या डाइकोड दोनों में से कोई भी एक हर्बिसाइड को सिलेक्ट करके उसको क्लीन कर लो। उसके बाद आप उसमें सिर्फ फरो ओपनिंग करो और उसके बाद सीड सोइंग करो।
0: भूमि विन्यास हमारे किसान भाई क्यों करें, उनको क्या फायदा होगा मिट्टी में?
1: भूमि विन्यास करने से पारंपरिक खेती है उसमें क्या होता है ना, अत्यधिक मतलब सोइल का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो भूमि विन्यास करने से हमें हमारी सोइल हेल्थ में सुधार होगा सबसे पहले। दूसरा क्या है कि हमारा सोइल का इरोजन रुकेगा, है ना, जो हमारे सीड है उनका जर्मिनेशन परसेंटेज भी बढ़ेगा, सोइल का मॉइस्चर भी

0: खरपतवार नियंत्रण करने के लिए मजदूर लगाना ना पड़े, और हर्बिसाइड तो इंसेक्टिसाइड बहुत ज्यादा वो होते हैं, कॉस्टली, इसलिए वो पैसे को बचाने के लिए गहरी जुताई करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन को प्राप्त करना चाहते हैं।
1: टिलेज मैनेजमेंट यानी जुताई प्रबंधन अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो जुताई प्रबंधन में जो हमारे फसल अवशेष बचते हैं वो किस तरह से महत्वपूर्ण है जुताई प्रबंधन में?
0: हाँ, जुताई प्रबंधन में जो जीरो टिलेज है, वो जीरो टिलेज में जो हमारे पहले का जो फसल होती है उसके जो रेसिड्यू रहते हैं उनको वैसे ही बरकरार ही रखकर उसके बाद उसमें सिर्फ डायरेक्ट सोइंग करते हैं, जिससे उसे वो जो रेसिड्यू सोइल में है वो वहां पे डिकम्पोज हो और ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करे, सोइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाए और सोइल मॉइस्चर को बढ़ाए, सोइल इरोजन या उसमें सूक्ष्म माइक्रो एंड मैक्रो जो इरोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बढ़ते हैं।
1: हमारे बीच में थे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट से पधारे हुए पीएचडी स्कॉलर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से ज्योति कहार जी। मैडम जी हमें जानकारी दे रही थी भूमि विन्यास एवं जुताई प्रबंधन द्वारा उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य में सुधार। मैडम जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर भूमि विन्यास से संबंधित और जुताई से संबंधित क्या क्या लाभ हैं, हमारे किसान भाई आपकी बताई हुई बातों को जरूर ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से खेती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू सर।
2: तो भैया जा तो हती भेंट वार्ता, भूमि विन्यास एवं जुताई प्रबंधन द्वारा उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार, ई पे जानकारी दे रही थी ज्योति कहार और बतकाव करो तू अपने रविन्द्र कुमार प्रजापति भैया ने। आगे हम बतका करें, ई के पहले थोड़ा सा रुकत है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: और भैया अब अपने पंच भैया इंतजार कर रही है धारावाहिक अटकन चटकन। तो जो अटकन चटकन धारावाहिक अपने पंच भैया पहले भी सुन चुके हैं और अपन आज फिर से सुनवा रहे हैं, तो अटकन चटकन को भाग 13 अपन और अपने पंच भैया सुने और आनंद लें।

0: है घरे का?
1: अरे आओ आओ आओ पंडित जी आओ, आज बहुत दिन में लगो चक्कर, कहाँ रहे आए, बिराजो तो आओ।
0: हो। अब तना जजमानी ज्यादा है, कहूं को पुराण होने, कहूं सत्यनारायण की कथा, कहूं ब्याह बरातें हो रही, कहूं पूजा पाठ हो रहे, अब सब लोग तो अधिक नहीं आउत। पहला तो हम आपस पुणे कथा माचवे नहीं आओ करती।
1: हाओ हाओ कुल काम वो तो लगो ही रहा थे, कुल दिनन से मोरी बहुत ही मनसा है कि एक आध दिना कथा तो सुनाई लेती।
0: हाओ हाओ अबे देखो आजकल बिल्कुल फुर्सत ही है, सुचाए जोन दिना काओ सो वही दिना हो जाए कथा।
1: कथा तो सुननी है, अकेले पूरी शुरू से आखिरी लो सुनाने पर है। आजकल का है कि कथा बाचे बारे पूरी नहीं सुनाओ, तनक मनक सुना दे बस।
0: अरे काकी कथा पूरी सुना भी, हमें ऐसे वैसे पंडित तो आए नो जो हाँ पूरी कथा न सुना है, हम तो पूरी कथा वाले आए।
1: हाँ अपन तो पूरी सुना।
0: हाँ बस एक बात है कि दान दक्षिणा बार पूरी दियो,
1: ना
0: हो कमी। हाँ
1: साफ
0: बात है।
2: हाँ, हाँ। की दक्षिणा आचाने पंडित जू।
0: राम राम आओ भैया। आओ आओ राम राम राम राम ए चटकन भैया सो हुए संगे।
3: राम राम राम राम।
0: अरे जे काकी अकाती कि हमें पूरी कथा सुनने।
3: हाँ ठीक है,
0: सो हमने कही कि दान दक्षिणा पूरी दे हो सो पूरी कथा बाँच भी। कैसे भूखे भजन ना हो गोपाला।
3: देखो पंडित जी जो तो ठीक है।
0: हाँ।
3: अकेले ऊ पुराण कैसी ना करियो जो ना आज लो पूरो ही नहीं हो पाओ।
0: कैसो
2: है चटकन, कौन पुराण की बात है तुम कर रहे?
3: अरे ऊ निकाला तू खल्ला को पुराण। एक बीर का भाव कि गांव भर ने जोरो चंदा।
2: अच्छा।
3: और पुरानी महाराज से कही

0: कि सबका शुरू से सुना होने पर है पुराण महाराज। बस भैया भाई बैठ की
1: अच्छा
0: पुराण भाव शुरू, एक आध पन्ना पढ़ो जो लो एक जने और आ गए। बोले देखो पुरानी महाराज शुरू से सुनने।
1: अच्छा।
0: सो पुरानी महाराज फिर से शुरू से माचन लगे, कछु और बचो जो लो फिर कछु भैया हरे आ गए। उनने सोई फिर से शुरू से बाँचवे की कई भैया, सो पुराण फिर से शुरू हो गो। ऐसे ही आदमी आउत रहे और पुरानी महाराज फिर से शुरू से पुराण बांट
1: आउत रहे।
0: पूरे आदमी भैया गांव के आए लो इकट्ठे नहीं भये और ना वो आए लो पुराण पूरा बचवा खल्ला को पुराण।
2: सुनो सुनो सुनो सुनो सभी गांव वाले सुनो, आज खेले बब्बा लोग कुआरी जमने। सुनो सुनो सुनो तो सभी जमे कंगन खा जेवर पहुंचाइयो भरो। सुनो
3: का अटकन चटकन भैया।
0: हाँ काकी,
3: खेरे बब्बालों कन्यन को भोजन तो होने ही आए।
0: हाँ वो
3: और उतई हो के हम पंडित जी की कथा सुन ले
0: और का
3: कैसो रहे
0: ठीक है ना।
1: स्थान पे हो के कथा को महत्व ही हो रही हो।
0: हाँ
1: है ना।
3: हाँ।
1: और हमारी चढ़ोतरी में सोग बढ़ोतरी हो जाए।
4: साजो रहो काकी साजो रहो। अब भाई चार ही पांच रोज बाद देखो लग्न है नई साल, लगने के नहीं लगने चाहिए।
1: हाँ, हाँ, भाई
4: है ना।
1: हाँ।
4: सो यही खुशी में होता ही तरक मनक अपना गावो बजावो सो हो जावे।
0: बिल्कुल भैया हो जावे। अटकर भैया बड़ी उम्दा बात कह रही है पुन्ने, मैं जोरा सब ढोलक मंजीरा बारन का।
4: हाँ जोरो
0: है हो जावे कछु गावो बजावो जो है सो। फिर अबई जाने तीर्थन खां
4: लारी
0: है। हाँ। सो लारी पे सब जने चल भी तीर्थ करवे है के नहीं।
4: हाओ
3: हाओ हाओ हम सरपंच साहब सब जने चल भी तीर्थ करवे। राम धाई मोरी तो बड़ी लालसा है तीर्थ करवे की।
0: ओ पंडित जी खलो।
3: हाँ

0: चट कर ले काकी तो अबे जान लगी तीरथ करबे
1: हो याम के
0: गांव लगी लमटेरा रे काकी अबे खेरे बब्बा लो चल ले खेरे बब्बा लो आज तो चटकन अपनी भी सो चटक जाने खूब है भीड़ भाड़ लोक गीत गबने सो इना मन के रुपयन के ढेर लग जाने आज जो है
1: तब तो हमारा धंधो सो यटकन भैया खूब चल जाने
0: काय तुम्हें कौन सो धंधो करने होते
1: अरे तुम्हारा गाना सुन के आदमन को पराने मूड
0: बा
1: सो हम बेच भी मूड की गोली धड़ाधड़ गगने
2: अरे तुम दो जने ऐसे ही हंसते ही रहो के कछु गा के सुना हो नहीं तो मैं फिर से सुना देती
3: देखो अटकन चटकन भैया
1: हाँ
3: भजन तो सुन भी तीरथ जाती मेरा
1: हो हो
3: आज कोनो नई साल को गाना सुनाओ
1: हो सुनाओ तो अटकन भैया
2: सुनाओ सुनाओ
0: सुनो

0: वाह अटकन भैया, वाह वाह वाह, आनंद ही आ गओ जो नई साल को गाना सुन के।
1: काय काकी,
2: हाँ
1: तुमने कथा नहीं सुनी अपनी, गाना भरा सुनत रही।
2: अरे अब कथा फिर सुन लेवी, तेरा जाने आ है सो कथा पुराण रोज ही नोई सुनने होते।
1: हाउ हाउ हाउ, चलो तो घर को दिन चलिए।
2: हाँ।
1: गहराई में हो चले दरबार।
2: हाँ,
0: देखो ऐसो है अटकन चटकन।
1: हाँ।
0: अपन तो हो ही आई हुआ चारू धाम।
1: हो हो
0: है?
1: हो
0: तीरा तो देखो यही उम्र में करू चाहिए।
1: ठीक कह रहे पंडित जी,
0: है ना। फिर खूब बुढ़ापे में गए सो ना सही स्थान लो पहुंच पाऊ था और ना ढंग से दर्शन ही कर पाऊ।
3: बिल्कुल सही बात है करी पंडित जी अपन ने।
0: और का?
3: अरे हम गए थे बद्री केदार, सो केदार में तो सातयात को पहाड़ चढ़ने आऊ।
0: अच्छा,
3: अकेले जमनोत्री की गेल बड़ी कदरी है पंडित जी।
0: अच्छा,
3: पहाड़ पे ठाड़ी चढ़ाई चढ़ने आऊ और सकरी गिती है गेल की अकेलो मुश्किल में कर पाऊ कहूं कहूं तो।
0: अरे
3: एक कोद ऊंचो पहाड़ ठाड़ू और दूसरी कोद हजारन हाथ गहरी गंगा जू। बहुत डर लगा था भैया चक्कर।
1: एक बात और है अटकन भैया,
3: का
1: आदमी कोनो भी तीर्थ करवे जावे ओते प्रदूषण सोई भारी फैलाऊ भैया।
3: जा तो बात है
1: कि नहीं। कोनो भी मंदिर में गए भीतन पे नाव लिखे कहूं उते के पत्थरा निकारे, पेड़न की डारे टूरे, कहूं नदियन में को बरसाती फूल जाने का डार के फेंक दे और पूरो जन शुद्ध जल हो सुगंध और कर दे।
3: देखो चटकन अपन खां होते चल के जे ये सब रोग ने।
1: हाँ।
3: जितने रोज रह भी अपन।
1: हाँ।
3: तो सब खा समझाओ ने जो को यह सुकृत मिल जाए।
1: हो हो।
3: कि भैया अरे जी भगवान की दई चीज यहाँ प्राकृतिक आस्था थी।
1: हो हो।
3: अपन इन्हें गंदो कर भी तो पुण्य में लेकर अपन खा। अरे पाप ही हाथ लगे है पाप।
1: बिल्कुल लगे।
2: ये पंडा सु बड़े बिकट हो तो तैकी।
3: अब हमसे
2: दान दक्षिणा ले लई और फिर बोले कि कछु पैसा टका लिखा दो।
1: अच्छा।
2: तुम्हारे नाती हुई ये सो बेदे है, तुमसे कछु नहीं चाहने मुए, लिखा भर दो बस।
1: अच्छा।
2: सो भैया का करो कि हमने 200 रुपये लिखा दे। सो उन्हें तोरता ही पोथी खोली।
1: अच्छा।
2: और बोलो कि 300 रुपया जमा करो भाई।
1: अरे
2: हमने कही कि जे काय किया है। हम अपन तो अबे काती के नाती दे है तुम्हारे। सो परमेश्वरों का बोलो कि जे तुम्हारे बब्बा लिखा गए थे।
0: अरे भैया उतर भीख मांगवे वाले सोगा मिला।
1: हो
0: लेन लगी रात अच्छे हट्टे कट्टे जवान लगे भीख मांगवे धन दुआ होती को।
1: अरे पंडित जी एक बेर की ना पूछो।
3: कैसी
1: एक बेर का भाव कि एक भिखारी हमसे बोलो के कहे भैया मिले भगवान के नाम पे कछु दक्षिणा मिले। सो हमने कही कि हमारे लो नैया कछु। सो ऊ का बोलो कि जब तुम्हारे लो कछु नैया तो हमारे बगल में बैठ जाओ सब कछु मिले।
3: ले ओ काकी आ गओ घर।
2: हाँ।
3: सो

0: अब बांदो डेरा डकोरा
1: हाउ बिल्कुल
0: लारी तो भुंसरा उते गेला पे ठाड़ी मिलने पोनखा
1: हाउ हाउ
0: चलो तो मा चटकन सब जने हो जाई मा तीरथ
1: हाउ हर काय बिल्कुल साची कही
2: अटकन भैया सब गावे बजाए वारे संग चल ही रहे
0: हाउ हाउ
2: हैं तो ते गए रही लोग गाओ चलो जो सु कम से कम
0: हाउ हाउ का हैं फोन दियो बाकी दियो लो लो चलो
2: लमडेरा गाइयो
0: हाउ लो सुनो

तो देखो भैया, अबे अपने पंच भैया सुन रहे थे धारावाहिक अटकन चटकन को भाग 13। और भैया जो धारावाहिक अपने आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति रही है, और अब अपन बतकाव कर लें आज की सीख की। तो भैया आज की सीख है कि जब बरसे उत्तरा और धान खाए कुत्तरा। भैया ईको मतलब जो है कि जब उत्तरा नक्षत्र में बादर बरसत है यानी पानी बरसत है, तो जोन अपनी धान की फसल है बाभी भैया जमीन में बिछ जात है। लेकिन ईको मतलब जो नहीं है कि नुकसान होते है, ईको मतलब जो है कि जब वह फसल बिछ जात है तो मतलब जो मानो जात है कि अपनी जोन पैदावार है यानी पानी की जोन बरसात है वह अच्छी हुई है। अब यदि अपन ईखो बैसो देखें तो बैसो जो है कि देखो ये अपन ने कछु पंच भैया मेहनत तो करत है खूब, लेकिन उस हिसाब से उन्हें फल नहीं मिल पाता है ना। कैसे के मेहनत भी कर रहे लेकिन फल मिल रहा कीखो दूसरे को, तो या तो भैया उनकी जो मेहनत है उनमें थोड़ी बहुत कहूं ना कहूं कमी है, हैं? तो अपने हमारा तो पंच भैया से जो ही कहो है कि अपने पंच भैया जो भी काम करें जो भी अपनो उद्देश्य बनाए उस उद्देश्य को पूरी ईमानदारी और पूरे मन से करें, कैसे तभी उन्हें उको फल और लाभ मिल पे है। और अब हो गई है भैया चलवे की बीरा, तो चलवे के पहला बता दें काल के कार्यक्रम। काल अपने पंच भैया सुने सुनो गीत गुणो बतकाओ, जो कार्यक्रम जनउपयोगी चर्चाओं और लोकगीतन पे आधारित एक कंपेयर्ड कार्यक्रम है। प्रस्तुति हुई है अपने रविन्द्र कुमार प्रजापति भैया की। इके अलावा एक भेंट वार्ता हरी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव और लाभ, जानकारी दे हैं भूपेंद्र सिंह बैस। इके अलावा आज की नसीहत बिजली की चोरी को रोकें, अपनो तो अपनो बतका और मनोरंजन तो होना ही है। और अब हो गई बीरा तो अपने छुट्टन भैया को आज्ञा दो पंचो राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम और तलत महमूद के युगल स्वर में फिल्म बाबुल का ये गीत। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद।

अभी आप सुन रहे थे बाबुल फिल्म में शमशाद बेगम और तलत महमूद को। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वर में प्यासा फिल्म का गीत। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत निर्देशन है SD बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म में मोहम्मद रफी और गीता दत्त को। आइए अब आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के युगल स्वर में गीत, फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म थी सीआईडी, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और तलत महमूद के युगल स्वर में सोने की चिड़िया फिल्म का गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत एक बार फिर ओपी नैयर का है।

अभी आप सुन रहे थे दुश्मन फिल्म में कुमार सानू और लता मंगेशकर को। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था उत्तम सिंह ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में काला बाजार फिल्म का गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं एसटी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में अकेली मत जइयो फिल्म का गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर आशा भोसले की आवाज में वो कौन थी फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को फिल्म थी वो कौन थी। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं दिल तो पागल है फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर और उदित नारायण की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह।

लता मंगेशकर और उदित नारायण के गाए दिल तो पागल है फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडिया वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है समाचार संध्या। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में

0: चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97

0: अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने

0: ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France, on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
2: Excellency, hum jante hain ki maritime trade ki duniya mein Bharat ke lakhon seafarers aaj duniya ke alag alag samundar mein apni sevaen de rahe hain, vishv ki pragati mein bahut bada yogdan de rahe hain aur main samajhta hu ki unki suraksha bhi utna hi mahatvapurna hai. Mujhe pura vishwas hai ki samjhote mein seafarer ki suraksha bhi sunishchit hogi aur usko prathmikta milegi. Excellency, main phir ek baar पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 Summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation.

0: Chachaka Visheke. ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कलपुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
3: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स हैं उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाइयां है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है

0: और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रिडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है, उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इससे बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो 15.6%, वो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 करोड़, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 करोड़ है, प्राइवेट प्रोडक्शन। यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 करोड़ में प्राइवेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014।
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इस 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास है, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हुआ करते थे, इम्पोर्टर अभी हम रहेंगे 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कम्प्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कम्प्लीट नहीं हो जाएंगे हम इम्पोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ, कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है, यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बनाकर के उसके बाद फैक्ट्रीज बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है। 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट टू मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्रीज चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद

0: क्या करेगी वे? आपके लिए बनाए, उसके बाद क्या होगा? तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, एल&टी हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 1,78,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, विच इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है। और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो, और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो। तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, हमने ही बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई स्पेयर उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें DRDO की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IITs है, वहां के बच्चे बड़े होशियार हैं, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स हैं वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम यहाँ, जैसे आप कह रहे हैं, वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कहीं एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टेल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा हो 2 साल हो गए, 2 इंजन नहीं आ पाए, 2 साल हो गए। क्यों? हमने उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो फैक्ट्री में बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसमें लगे पर अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक की उत्पोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत, उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है। तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इम्पोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि पांचवी श्रेणी का लड़ाकू विमान है, उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में तीन कंपनियों को, तीन कंसोर्टियम्स को

0: इनवाइट करा कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की दो श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें ये पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
2: देखिए ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करते, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इस दिन आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें जरूर, चाहे स्टार्टअप्स के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल सिस्टम हो या उसके सीकर्स हो या उसके पास फोटोग्राफिक देते, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप्स के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस बात का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशंस है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसमें रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए UAVs को मद्देनजर रखते हुए न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चाहे स्पेस है नेविगेशनल है जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिलकर के अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, जो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है ये हम भारत के अंदर बनाए, और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन

0: तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?
1: इसके कई सारे आंसर हैं। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी। फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूं, कारीगर की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी। और सबसे बड़ी बात, अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे। जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं, R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। जब आप ग्रो करेंगे तो, जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए। और वो ट्रेन्ड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन्ड मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है। कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी, जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा, वो जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पे इम्पैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इम्पैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
0: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
2: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर 1 GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर 2 तकरीबन 17-18 trillion का है, तो नंबर 3-4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए, लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है निंदना गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिएगा कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फटाफट कौन से जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया, 4.5 जनरेशन, 5th, 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब अब भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया, इसको किस तरह, तो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट हैं, चाहे अपने UAV हैं, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर हैं, चाहे अपने लाइट टैंक्स हैं, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस हैं, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स हैं, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक US के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है। जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब ट्रेन वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, जीत मेरी

0: होगी। मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मकाम पर जाना चाहिए भारत को, वो मकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है, तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है? अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची हैं जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट, फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया, जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के जो पोते मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिससे तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाइप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन के, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यही इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है, और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करने चाहिए, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपका कोई हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहां कि आपने ये बनाना, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कोई सिखाएगा नहीं, कोई, देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D वेरी स्ट्रांग, R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हुए, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
0: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आले दर्जे का बनाना है, अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम

0: नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें। हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

0: अभी आप सुन रहे थे चांदनी फिल्म का गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और बाबला मेहता की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, जिसे संगीतबद्ध किया था शिवहरि ने, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र थे नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वावने, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़। रामगढ़ कैंट झारखंड से ये हमें मेल प्राप्त हुआ है निप्पी स्वानवे का। इसी क्रम में ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम देवी किशन, भावना मनमानस और कनका पटेल का। ये अगला मेल आया है गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता, राधा नामदेव, रानी शर्मा, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई। ये अगला मेल आया है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद का। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। संतोष कुमार सोनार, सन्नी, मुन्ना, बंडू दादा का ये हमें मेल प्राप्त हुआ है रथ चौक बहादुरपुर खानदेश महाराष्ट्र से। ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से ये मेल हमें भेजा है मनी रामपाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल और इनके परिवार वाले। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी ने। ये इसी क्रम में ये अगला मेल आया है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके परिवार वाले। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। और इसी क्रम में अगला मेल भेजा है दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ही एक और गीत, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आइए अब आपको सुनवाते हैं टू स्टेट्स फिल्म का गीत। आवाज है शंकर महादेवन, सिद्धार्थ महादेवन और राशिका शेखर की। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं पांडा पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्रीबाई देवांगन। इसी क्रम में अगला मेल आया है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉ डब्ल्यू अंसारी, डॉ सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। ये अगला मेल आया है ग्राम मामना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। इसी क्रम में अगला मेल है ग्राम बेलपुर जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, साधु बाबा, बीरेन सिंह तोमर, संजय, दीपक और सोनू तोमर का। नूरमहल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। इसी क्रम में अगला मेल है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। इसी क्रम में अगला मेल आया है ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया का। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं आपको टू स्टेट्स फिल्म का गीत, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स फिल्म का गीत। आवाज थी शंकर महादेवन, सिद्धार्थ महादेवन और राशिका शेखर की। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन। तो अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गाने तो जल्दी से हमें मेल कर दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है aircharpur1976@gmail.com। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: Mummy, where is that airplane going?
2: My child, now every corner of India is getting connected through the skies.
3: When India takes flight, dreams take flight, cities connect, opportunities grow.
2: Over the past 12 years, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, more than 160 airports have been developed. The Udaan scheme has made air connectivity possible for smaller towns and cities. Digi Yatra has made air travel smoother, simpler and more seamless.
3: Ministry of Civil Aviation, a new flight for a developing India. 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं लम्हे फिल्म का गीत। आवाज है लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन शिव हरि का। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं ग्राम पोस्ट गौना कुसमाड़, थाना सौजना, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर, झांसी, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। ये मेल हमें भेजा है कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, रामदेवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनलाल नामदेव, चाहना नामदेव, आकाश नामदेव, रानी परी नामदेव, सुरभि नामदेव, पायल नामदेव और इनके मम्मी पापा। ये अगला मेल आया है पलारी छत्तीसगढ़ से। दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन और नीतेश कुमार देवांगन। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। ये अगला

मेल आया है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का। इसी क्रम में अगला मेल है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम गुरियाना पोस्ट पटना थाना नाराहट जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से सीताराम नामदेव, सिद्धार्थ नामदेव, शीला नामदेव, रोशनी नामदेव। ग्राम बचरई थाना नाराहट जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से मेल आया है दिलीप कुमार नामदेव और रानी नामदेव का। ग्राम पोस्ट सिद्धबाहा थाना महरौनी तहसील महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से ये मेल हम तक भेजा है पप्पू नामदेव, ममता नामदेव, विनीता नामदेव और राजकुमार नामदेव ने। ग्राम भदौरा गुढ़ा तहसील महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से ब्रजकिशोर नामदेव, सुखवती नामदेव, अमित कुमार नामदेव, हेमलता नामदेव, शिवम नामदेव और दीपक कुमार नामदेव ने। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहावकर, निर्मला नुहावकर, विशाल नुहावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आयुष मुरहेकर और इनके परिवार वाले। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, नाजिया इब्राहिम ने। अगला मेल हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसी क्रम में अगला मेल है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा, शविस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं लम्हे फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज में लम्हे फिल्म का गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, जिसे संगीतबद्ध किया था शिव हरि ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत, आवाज उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की, शब्द रचना समीर की, संगीत निर्देशन जतिन ललित का। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ये अगला मेल हम तक भेजा है कृष्णा गोड़ के प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, सुनीता शिंदे, रूशी शिंदे, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, राजपाल पंकज, सोनू सुरेश, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से ये मेल हमें भेजा है दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और समस्त परिवार वालों ने। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली और इनके परिवार वाले। गांव जाखौद

राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने। इसी क्रम में ये अगला मेल आया है, दुर्गा चौक जूना पानी सनावद मध्य प्रदेश से कालू सिंह बडोले, सीताराम हीरालाल बडोले, साहिल सुमन बडोले, विशाल हरिओम भावना बडोले ने। ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागनी रिया रेणु, दिव्यांशी आराधना और रोनिका यादव ने। वारली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान ने। नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार और हिमांशु सुथार ने। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और जयपाल यादव। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित अहूजा ने। यह अगला मेल आया है, महेश गेट नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु और इनके परिवार वाले। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। इसी क्रम में ये अगला मेल आया है, ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर यूपी से रोहित यादव, बेटा यादव, पंकज यादव, अंगद यादव, आयुष यादव, आर्यन, आदर्श और हार्दिक यादव का। अगला मेल आया है, ग्राम पोस्ट तालगांव तहसील भंडार जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नांगल, संतोष कुमार नांगल, प्रताप सिंह नांगल, अभिषेक कुमार नांगल, शिवम कुमार नांगल और इनके मम्मी पापा का। अगला मेल आया है, फाजिल का पंजाब से खेड़ा परिवार का ये हमें मेल प्राप्त हुआ है, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और इनके परिवार वालों का। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडेय राम राजवाड़े। इसी क्रम में अगला मेल है, ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी का। गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। और इसी क्रम में ये अगला मेल है, एस एम जावेद शगुफ्ता अंजुम का गुमला झारखंड से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म से ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत, आवाज उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे जतिन ललित। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं के और जी साहित्य की आवाज में मक्खी फिल्म का गीत। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार हैं एमएम करीम। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं ग्राम केदारताई पोस्ट मारकुआ जिला झांसी से डॉक्टर जहीर खान, अनीसा खान, इम्तियाज खान, इमरान खान, साइमा चिश्ती, अयान अली और लविश और जैनी। रामलीला मैदान सचेंडी से ये पत्र में प्राप्त हुआ है बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु, मीत, अमोल, जानवी, शिवांश और अभिजीत सिंह सांगा का। बिलसराया से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम गोल्डी, दीप्ति अनुज और ओम चक्रवर्ती। श्रीकांत विश्वकर्मा, सुमित, अमित श्रेष्ठी, विनीता विश्वकर्मा का ये पत्र में प्राप्त हुआ है ग्राम पोस्ट गुढ़ा पाली जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। ग्राम मवैया पोस्ट इमलिया तहसील नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से देवेंद्र कुमार राजपूत, राजेंद्र कुमार राजपूत और इनके मम्मी पापा। इसी क्रम में ये अगला पत्र है सोनू विश्वकर्मा और मनु विश्वकर्मा का, ग्राम साल्याखेड़ी जिला आगरमालवा उत्तर प्रदेश से। गायत्री मोहाल पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से शिवनारायण पांचाल, देवनारायण, मोहित, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहिनी, पवन, अनुज, गुड्डी और अंकुश पांचाल। जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी, पूजा तिवारी, पंडित राम बिहारी शास्त्री, आशा तिवारी, राजा भैया, अभय और कार्तिक तिवारी। नई मस्जिद चौराहा तिलक नगर कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से कौसर जहां मंसूरी, नजीम।

नसीमा, महनाज, करिश्मा, उम्मेह विवा, मुन्नी मंसूरी और शाहिस्ता। इसी क्रम में अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम दुर्गापुर तहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मान सिंह आदिवासी, मीना वैष्णवी, सत्येंद्र कुमार हरविलास आदिवासी और मनोज रामदेव। ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर। ग्राम कनाय पोस्ट पोंगरी तहसील नरेनी जिला बांदा उत्तर प्रदेश से मुन्ना लाल और भैयालाल। अजय पाल रेडियो श्रोता संघ डांडे का बारा। अजयगढ़ जिला पन्ना से भगवत सिंह यादव, शिखा यादव, अनुराधा यादव और आदर्श। पलटूराम अहिरवार का ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है लार बंजरिया जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। यह अगला पत्र आया है लालू नामदेव, श्रीकांत विश्वकर्मा, ओम प्रकाश नामदेव, मान सिंह जमुना कुशवाहा का ग्राम धनवा तहसील बड़ा मलहरा जिला छतरपुर से। प्रेम रेडियो श्रोता संघ ग्राम बनगांव तहसील पटेरा जिला दमोह से कमलेश यादव, हरिराम यादव, संतोष, जग्गू राय, राजेश राय, मनोहर नामदेव, आदित्य और रज्जी नामदेव का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, कुमारी साहू, अजय कुमार साहू और जयकिशन साहू का। गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी, चार मीनार चौक गंडे पंडरिया से दरियानामल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम और अनिलराज मोटवानी का। और इसी क्रम में यह अगला पत्र प्राप्त हुआ है कटोरा तालाब रायपुर से नीरज अंजलि और कमल माखीजा का। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मक्खी फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे केके और जी साहिथी की आवाज में मक्खी फिल्म का गीत। शब्द रचना नीलेश मिश्रा की थी, संगीत निर्देशन था एमएम करीम का। आइए अब आपको सुनवाते हैं तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत, आवाज कृष्णा की, शब्द रचना राजशेखर की और संगीत निर्देशन कृष्णा का है। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं दिल्ली से विभा तिवारी, नरेंद्र तिवारी और निवेदिता तिवारी, खड्डी मध्य प्रदेश से ये हमें अगला पत्र भेजा है कुलदीप त्रिपाठी, अदिति त्रिपाठी और माही त्रिपाठी ने। इसी क्रम में ये अगला पत्र आया है बांदा उत्तर प्रदेश से मंजू दीक्षित, अतुल दीक्षित और रीता द्विवेदी का, साथ ही इनके परिवार वाले और अमित द्विवेदी। इसी क्रम में ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, पूरन रोहित, लल्लू राम, छोटू, डुनडुन और इनके परिवार वाले। इसी क्रम में अगला पत्र आया है बेमित्रा नया पारा से ईश्वरी प्रसाद साहू, भावना साहू, नीलेश कुमार और श्रद्धा साहू, कटघोरा छत्तीसगढ़ से चंद्रपाल सिंह, शकुंतला, मनोज पाल सिंह, लखन पाल सिंह, दिनेश पाल सिंह और कविता। इसी क्रम में ये एक और पत्र में प्राप्त हुआ है कुशवाहा रेडियो श्रोता संघ मुहाल दीवानपुरा राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से विनोद कुशवाहा, नीरज, मयंक, घनश्याम, सावित्री देवी, प्रेम रानी, दिव्या और नीलम का। रजौनी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंदपाल, प्रतीक्षा पाल, दीक्षा, विमलेश और नीतूपाल। आदर्श रेडियो श्रोता संघ ग्राम मिर्तला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से रामजीवन राजपूत, राममिलन, रामासरे, भूरा, सूर्यांश, ऋषिकांत और समस्त राजपूत परिवार वाले। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत, आवाज थी कृष्णा की। आइए अब आपको सुनवाते हैं डर फिल्म में लता मंगेशकर और अभिजीत के युगल स्वर में ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन शिव हरी का, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं नरसिंहगढ़पुरवा छतरपुर मध्य प्रदेश से दयाशंकर कुशवाहा, भवानी देवी, नारायण दास कुशवाहा, इंदु देवी, भागीरथ कुशवाहा, ममता देवी, यश राज, आयुष, कुमारी भारती कुशवाहा और रिखी राम का। इसी क्रम में ये अगला पत्र आया है सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान का। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त

डागला परिवार वाले, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा और कुश मूड़त का, बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भारत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी ने। यह अगला पत्र है परीमहल कासगंज से आबाद खान, गजाला खान, अल्ताब नबील और एम असलम शैफी, एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और इनके परिवार वाले, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। इसी क्रम में कुछ मेल भी प्राप्त हुए हैं। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। इसी क्रम में अगला मेल है मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और समस्त नामदेव परिवार वालों का ये मेल हमें प्राप्त हुआ है। मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सोरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पीएस नावकर और तुषार करांगले, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। इसी क्रम में अगला मेल है धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का। ये अगला मेल है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं आपको अभिजीत और लता मंगेशकर के युगल स्वर में डर फिल्म का ये गीत।

अभिजीत और लता मंगेशकर के गाए डर फिल्म के इस गीत के साथ ही मनभावन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहती है डॉक्टर प्रणति चतुर्वेदी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में आपसे 5:55 पर फिर मिलेंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।